ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी, नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं, अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप, पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के, एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक, और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया। एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं। ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा आके, काहे को लंबी यात्रा करोगे? इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के, और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव, कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो, देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी, प्यास से व्याकुल था, एक बार इसने पानी पिलाया था,
अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा न बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे। सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हैं। हमको शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए। आप कुम्हार की मिट्टी हैं, अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता। एकदम महीन, फिर पानी डाल के पैरों से गूंधता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंध के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भगवतिक रस बह जाएगा, और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से, जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव। शास्त्र को तुम क्या समझोगे, तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे, नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंगभर से रंग का बरसता है, होली हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो। तो कारण बरस रहा है काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम की होली तो फिर नयो नेह नव रंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू के ऐसा प्रेम रंग, ये अब दूसरा रंग ना चढ़े।

देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता। हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे जो कपटी है छली है दोषों से युक्त है उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे बोले मन मैल मिटावे उज्जवल कर दे धोए, जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने बता दिया बलिहारी गुरु आपने बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे। गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है पीटा जाता है वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन। वचन आधीन सदा रहें रूप समुद्र गाद, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज हमारी महारानी जो कि कैसे अधीन है, वचन आधीन सदा रहें। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा है। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं। मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे सिद्धांत नहीं से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहां की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जो हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे कर्माणुश्रुति बोधितानि नितराम कुर्वंत कुर्वंत मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान ग्रहणंतु मुंचंतु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि दो महीने बाद

इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक एक वर्ष इसमें भोजन पाएगा। एक वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है, वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे। उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म्य हैं, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे हैं, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या? सब भोग जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप, सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा, ऐ मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू, लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बोले? रूप माधुरी ध्यान समावे, हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है। प्रभु जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, शांत अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है, वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा, हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, ताप जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है, अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनि स्मरण, बार बार भगवत स्मरण करें।

जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। तज तीरथ हरिराधिका तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यहां वृंदावन में एक कदम चले तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगाहन का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा। देखो जैसे दूध पीने से सद्या शक्ति तुरंत बल आता है, तो उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं। खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं, उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं। यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं। हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है, हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे बिलग हो रहा है, इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है। एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं जब वो कुंभ पड़ता है। प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है, जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्रीमुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने कुछ भी हो जाए, वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा, केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम। दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान शेष जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं, कैसे समझाएं। बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं है मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे। हमारी ऐसी कुछ दशा है, शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है गिर जाएगा तू, ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेश पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा, जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक
पी पी कह के पुकारता रहता है।

0: मेघ प्रीतम को देखता रहता है। मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनी, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? है तो फिर आपकी तरफ उंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जू से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने, सब कोई जानता है लैला राज घराने से थी। उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे तो उससे पैसे न मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावरा है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाए। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए। हा लैला जलेबी, अब जितनी दुकान वाले हैं सब वहां हिसाब, तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सके। बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे, कह दो। अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू। उसने कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेवी ऐसे बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मंत्र। समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है। देख लो अंदर से देख लो। चातक को पन गहिरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेरण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया। हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया। ऐसे चोच कर
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: अच्छा, आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में ना ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स बहुत कॉमन हो गए हैं।
1: नया नजरिया विद आरजे पलक।
0: नमस्कार, मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया। क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बी के ज्योति जी एंड बी के प्रिया जी। वेलकम मैम।
2: शांति, थैंक यू।
0: ज्योति जी, एक फेलियर के बाद मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा, ऐसे नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे कैसे डेवलप होते हैं और इनसे बाहर कैसे निकला जा सकता है?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आजकल के जो बच्चे हैं या हम देखते हैं बहुत सी यूथ भी है, वो इन सब चीजों से जूझ भी रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ एक बार का फेलियर होना नहीं है, उसके साथ साथ जो लोग उनको रिस्पॉन्स करते हैं। कई बार फेलियर होने पर, एक बार फेल हो गए तो लोग भी उनको डिमोटिवेट करने लग जाते हैं कि आप तो सफल हो ही नहीं सकते हो, आप क्यों कोशिश करते हो। कुछ लोग पहले से भी उनको रोक रहे होते हैं और वो फिर भी वो कार्य करते हैं, तो और निग्लेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे व्यक्ति का अपने ऊपर से विश्वास उठने लग जाता है और वो खुद भी नेगेटिविटी में। और हम आजकल चारों तरफ देखते हैं, जो भी हमारे आसपास में चीजें मिल रही हैं या लोग मिल रहे हैं, वो नेगेटिव ही बातें करने वाले हैं।
0: बिल्कुल।
2: जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, अगर किसी पेशेंट से कोई मिलने जाता है तो उसके पास जाकर के वहां पर उसको बल देने के बजाय कई लोग ऐसी बातें करते हैं, फलाने को ऐसी बीमारी हुई थी, वो उसकी डेथ हो गई, उसके घर में ऐसा हो गया, तो व्यक्ति को डरा देते हैं। आज किसी के पास मोटिवेट करने वाले शब्द नहीं है, इसीलिए आज जब कोई बच्चा फेलियर होता है या किसी भी कारण से किसी जगह पर रह जाता है, तो उसके आसपास के लोगों का सपोर्ट अगर उसे नहीं मिलता है, आसपास के लोग भी उसको नेगेटिव ही रिएक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे उसका माइंड भी नेगेटिविटी में चला जाता है। वो खुद पर भी फेथ नहीं करता, लोग भी उसको वैसे ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका एक पैटर्न बन जाता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल।
2: लेकिन अगर कहीं भी ऐसे व्यक्ति को अगर एक भी सपोर्ट एक ऐसा मिलता है, और इसके लिए अगर व्यक्ति निकलना चाहता है तो सबसे पहले तो खुद खुद का सपोर्टर बनना है।
0: सही बात है
2: कि कोई भी असफलता हमें सदा के लिए असफलता नहीं दिलाती, उसके लिए हमें जरूरत है कि रोज अपने आप में कुछ क्वालिटीज, अपने आप में कुछ विश्वास रखें। आज कहीं भी देखें तो हम जैसे ब्रह्मा कुमारीज में है तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और कई बार हम फेथ की बात करते हैं और हम पूछते हैं आपको भगवान पे फेथ है, तो लोग कहते हैं यस हमें भगवान पे फेथ है।
0: बिल्कुल।
2: आपको फैमिली पे फेथ है, यस हमें फैमिली पे फेथ है। लेकिन जैसे कहते हैं आपको अपने ऊपर फेथ है, तो कहते हैं नहीं हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। माना कहीं ना कहीं खुद खुद से ही दोस्ती नहीं है, खुद खुद के लिए ही पॉजिटिव नहीं है
0: जी।
2: तो जब हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो लोग भी हमें उसी नजरिए से देखते हैं और हमेशा ही पीछे करना चाहेंगे। अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे पहले के जमाने में लोग होते थे तो वो लोग अगर किसी को ये कहते थे कि तुम सफल नहीं हो सकते, लेकिन व्यक्ति के अंदर खुद की इतनी विल पावर होती थी, नहीं हम सफल होकर दिखाएंगे, वो उसी पैटर्न से चलते थे और बहुत सक्सेसफुल भी होते थे। और ये जितने भी हमने साइंटिस्ट देखे हैं, इनकी हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो यही हमें मिलता है कि उनको सबने निग्लेक्ट किया, लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर से अपने आप को सफलता के शिखर पर लेकर गए। लेकिन आज का जो जनरेशन है या आज के जो लोगों की मेंटालिटी बन गई है, जिसमें हम सब भी शामिल हो जाते हैं कभी कभी, कि अक्सर हम यही सोचते हैं कि नहीं, फेलियर माना ही फेलियर, अब हम आगे सक्सेस नहीं हो सकते हैं, हमारे अंदर पावर नहीं है। और कहीं ना कहीं सच में ही उनकी इनर पावर बिल्कुल वीक हो चुकी है, क्योंकि कहीं पॉजिटिव बातें मिल ही नहीं रही हैं, कहीं कोई मोटिवेट कर ही नहीं रहा है,
0: बिल्कुल
2: कहीं से उनको एप्रिशिएशन नहीं मिल रही है। आज इसकी बहुत कमी हो गई है, इसी कारण से आज व्यक्ति के माइंड में जो है वो नेगेटिव पैटर्न बनता जा रहा है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है और वो एक बार फेलियर को भी अपने जीवन के फेलियर में शामिल कर लेता है।
0: बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव थॉट्स सिर्फ एक सोच नहीं, कभी कभी हमारी आदत भी बन जाते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सोशल मीडिया और कंपैरिजन ट्रैप किस तरह हमारी थिंकिंग को इफेक्ट करते हैं। बने रहिए नया नजरिया के साथ।

0: जेल में खाना तो अच्छा होगा
1: ना? खाना छड़, पीने की सोच, बियर शर सब बंद पैन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई याद अब फैल रही है यार। पुलिस, पुलिस, दिस इज अनरियल मैन, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार। 89.6
3: रेडियो महारानी, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हट।

0: और मैं तो कहूँ सिर्फ यंग पे नहीं, इनफैक्ट जो बच्चे हैं,
1: बिल्कुल,
0: इनफैक्ट जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन पर भी ये बात कहीं ना कहीं लागू होने लग गई है
1: जी।
0: वो भी कंपेयर करने लगे हैं कि हमने अपनी उम्र में नहीं किया, देखो ये कर पा रहे हैं। तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं या अपने को डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो तो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हर कोई कंपेयर जरूर कर रहा है और हम सब जानते हैं कि ये बात सही नहीं है। पर उसी दौरान मुझे इस थॉट पैटर्न को रोकना है, ब्रेक करना है, स्लो करना है, जो भी है वो मुझे ही करना है
1: जी।
0: तो मेरा मानना ये है कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपना जो भी सक्सेस है या व्हाटएवर है वो डाल रहा है, तो ये बात याद रखिएगा कि दुनिया में जो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा, जिनकी हम बात करें, जो आए दिन अखबारों में है, न्यूज में है, मीडिया में है, जो खुद नहीं डालते लेकिन मीडिया डाल रही है, वो अपनी सक्सेस को कभी भी सोशल मीडिया पे खुद नहीं डालते।
1: बिल्कुल,
0: ये चीज आप खुद पे डाल कर देखिए कि हमें अपनी सक्सेस क्यों डालनी है, या हम कुछ भी कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे क्यों डालना है।
1: बिल्कुल,
0: और आज की डेट में तो देखा गया है कि जो डाल रहा है, जो घूमने गया है व्यक्ति, अभी हाल ही में न्यूज आई कि व्यक्ति घूमने गया है, पूरी फैमिली की फोटो अपलोड की है और वहीं से उनके घर में चोरी हो गई, क्योंकि फेसबुक से या जो भी वो है प्लेटफॉर्म है, वहां से वो न्यूज जो है वो लीक हुई है और ये सारी चीजें हो रही हैं। और अगर मैं अपनी सक्सेस का डालता हूँ कि भाई मुझे ये अवार्ड मिला है, तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसकी सक्सेस को देख करके अगर डीमोटिवेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं ही डीमोटिवेट हो रही हूँ, तो मैं अपने आप को डीमोटिवेट क्यों कर रही हूँ, मैं उसे देख करके मोटिवेट क्यों नहीं हो रही हूँ, ये मुझे अपने आप से पूछना चाहिए कि जब वो व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: वो अपने फील्ड में अगर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, मैं उस फील्ड में नहीं बढ़ सकता, वो मछली, मैं तैर नहीं सकता, मैं मछली से रेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने फील्ड में क्यों नहीं अपलिफ्ट करूं अपने आप को, आगे बढ़ाऊं अपने आप को, इस तरह के थॉट पैटर्न भी तो हम ला सकते हैं। ये मेरे ही हाथ में है, और अगर हम चाहे कितने ही किसी के स्पीचेस सुन ले, लेकिन अल्टीमेटली उस पॉइंट पे मुझे अपने आप को ही मोटिवेट करना है, अपने आप को ही वो थॉट पैटर्न देने हैं कि ये अगर मैं देख रहा हूँ तो इससे मुझे अपने आप को, अगर मैं उसे देख रहा हूँ तो मुझे अपने आप को चैप्टर देना है।
1: बिल्कुल,
0: कि मुझे भी आगे बढ़ना है, और जरूरी नहीं है कि मुझे आगे बढ़कर सेम प्लेटफॉर्म पे अपने आप को भी अपलोड करना है ताकि चार लोग देख सकें।
1: बिल्कुल,
0: नो नीड, ये जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो खुद अपलोड नहीं हो रहा है, उसे दुनिया अपलोड करती है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए अपने आप को अपलोड करने में उस पे में मत रहिए कि सोशल मीडिया पे अपलोड हो रहा है, एनर्जी अपलोड कीजिए, मोटिवेशन अपलोड कीजिए, और फिर उसके बाद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो दुनिया आपको अपलोड करेगी।
2: कंपैरिजन ट्रैप कब मोटिवेशन से प्रेशर बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे उन थॉट्स की जो रात भर हमें सोने नहीं देते। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया।
1: नया नजरिया विद आरजे पलक।
0: ज्योति जी, कई लोग रात को सोने जाते हैं लेकिन उनका माइंड पुरानी बातें, फ्यूचर की टेंशन और व्हाट इफ वाले थॉट से भरा होता है। ऐसे वक्त में दिमाग को शांत करने का सबसे इफेक्टिव स्पिरिचुअल तरीका क्या हो सकता है?
2: एक्चुअल में देखा जाए तो इस प्रॉब्लम से निकलने का सलूशन ही मेडिटेशन है।
0: जी,
2: कि आप अगर मेडिटेशन का मतलब सिर्फ क्या है, मेंटल अटेंशन,
0: बिल्कुल
2: मन की जो विचारधारा है उसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि आज की डेट में हमें सब लोग ये तो कहते हैं कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन क्या सोचना चाहिए
0: बिल्कुल
2: ये कोई नहीं बताता है
0: जी।
2: कि हमें ऐसे समय पे क्या सोचना पड़े। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर भी, मेरे साथ कोई चीट किया है किसी ने या कोई ऐसी बात हुई है, तो उस कंडीशन में हम जो कि मेडिटेशन करते हैं जब, तो हम अपने आप को एक थॉट देते हैं कि जिसने मुझे चीट किया वो उसकी अपनी नेचर थी, मेरी नेचर क्या है, मुझे उसके हाथ की कठपुतली नहीं बनना है, मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और शायद कभी किसी समय का मेरा उसके साथ कोई हिसाब किताब रहा होगा। तो मेडिटेशन की ऐसे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको हम अपने माइंड में लेकर चलते हैं, लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट मेथड है वो है कि सुबह सुबह उठकर पहले आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे, पॉजिटिव बात करें अपने लिए कि किसी के भी हाथ की आप कहीं कठपुतली तो नहीं बनते जा रहे।
0: बिल्कुल।
2: तो अपने लिए पहले खुद को चेक करना है कि मेरी खुशी किसी पे डिपेंड तो नहीं है, मेरी सक्सेस किसी व्यक्ति विशेष पे या किसी साधनों पे तो डिपेंडेबल नहीं है। अगर हम डिपेंड होके चल रहे हैं तो मेरी खुशी वो टेम्परेरी रहेगी, मेरी सक्सेस भी वो टेम्परेरी रहेगी।
0: बिल्कुल।
2: और अगर हम इनर पावर से बहुत पावरफुल हैं, बहुत अपने आप को स्ट्रांग करके चल रहे हैं, तो हमें आगे सफलता मिलेगी। जैसे अगर मुझे ऊंचाई पर चढ़ना है, मेरे को आगे जाना है, लोगों ने क्या सोच रखा है वो उनकी सोच है, मुझे आगे बढ़ना है तो मेरे सामने बहुत सारे बैरियर्स तो आएंगे।
0: बिल्कुल।
2: अगर मुझे एक अच्छा दौड़ने वाला बनना है तो बैरियर तो क्रॉस करने पड़ेंगे। अगर हम बैरियर से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वहां पर फिर हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो बैरियर को अपने आप में एक चैलेंज समझ के अगर चलते हैं और सुबह सुबह उठ करके अपने आप को ये कहें, मैं सदा सफल हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे सिर पर परमात्मा का हाथ है, मैं जो भी कार्य करता हूँ वो सफलता मिलती है उसमें, पहले खुद को ये थॉट देना है, तब हम लोगों के साथ वो चीज डील कर पाते हैं। अक्सर होता क्या है, हम बहुत पॉजिटिव होकर चलते हैं लेकिन लोग हमें नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। जैसे इसकी एक स्टोरी सुनाऊं तो एक बार एक संत थे और वो संत जब स्नान कर रहे थे पानी में, तो उनके हाथ में उन्होंने देखा एक बिच्छू जो है वो डूब रहा है। उन्होंने उसको उठाया और उसको किनारे पर रखने के लिए ले जाने लगे तो बिच्छू ने उनको डंक मार दिया, फिर उनके हाथ से वो गिर गया, वो फिर उठाया उन्होंने और फिर उठाने के बाद फिर जो है वो वापस ले जा करके रखने लगे। तो बार बार ये प्रोसेस, उनके ऊपर जहर चढ़ रहा है। अब कुछ लोग जो बाहर खड़े थे वो लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बिच्छू आप इसके साथ क्यों आप उसको उठा रहे हैं, वो आपको बार बार डंक मार रहा है और आप पे बहुत ज्यादा जहर चढ़ रहा है, आप ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जो आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है उसके साथ, लेकिन फिर भी आप उसको क्यों उसको बार बार उठा रहे हैं। कहा मैं इसे बचाना चाहता हूँ। बोले लेकिन ये तो आपको मार रहा है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वैसे दुनिया में लोग कहेंगे प्रैक्टिकल होना मुश्किल है, लेकिन नहीं, ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है।
0: बिल्कुल।
2: उन्होंने कहा कि ये बिच्छू है और इसकी प्रवृत्ति जो है वो डंक मारने की है, ये मरते मरते भी अपनी उस आदत को नहीं छोड़ रहा है, मरते मरते भी वो डंक मार रहा है। तो मैं एक संत होकर के मेरी प्रवृत्ति बचाने की है, तो क्या मैं मरने के डर से अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ दूं? माने वो बिच्छू एक जीव होकर के वो भी अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा, उसे पता है मैं मर रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा है। और मैं एक संत हूँ, एक महात्मा हूँ, मेरी इतनी ऊंची, मैं लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनता हूँ, तो क्या मैं मरने के डर से अपनी इस नेचर को छोड़ दूँ? तो ये भी चीज हमें बहुत कुछ सिखाती है।
0: बिल्कुल।
2: स्टोरीज हमें बहुत कुछ जीवन में अप्लाई करना सिखलाती है कि लोगों ने हमें कुछ भी नेगेटिव भी बोलेंगे, निगलेक्ट भी करेंगे, लेकिन मुझे अपनी सोच को, मुझे अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना है जो दूसरों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो।
0: बिल्कुल।
2: और इसके लिए हमें थोड़ा सा किसी पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना या कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें जरूर जिनसे आपको कुछ पॉजिटिव चीजें मिल सकें। ऐसे में आप टाइम देंगे तो आपको हर जगह पर हेल्प मिलेगी। और मेडिटेशन में तो आप 15 मिनट भी अगर अपने साथ पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देते हैं और परमात्मा से कुछ पल के लिए अपने मन की बातें करते हैं तो आपको वो बहुत बहुत हील करता है।
0: हम सब कभी ना कभी ऐसे थॉट्स का सामना जरूर करते हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलना भी मुमकिन है। ब्रेक के बाद आज का सबसे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल सवाल लेकर लौटेंगे। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नया नजरिया ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया।
1: नया नजरिया विद आरजे पलक।
0: प्रिया जी, अगर कोई पर्सन हर सिचुएशन में पहले नेगेटिव ही सोचता है, तो वो आज से ऐसी कौन सी सिंपल हैबिट्स शुरू करे जिससे धीरे धीरे उसकी थिंकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलने लगे?
2: तो बिल्कुल। तो फिर अगर मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मैं कहीं भी कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट फर्स्ट थॉट मेरा नेगेटिव होता है, उसके बाद धीरे धीरे अगर मैं अपने आप को रिकवर कर लेता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मेक इट अ हैबिट कि मैं जब भी कुछ ऐसा मेरे साथ होने लगे कि थॉट आ रहा है, तो हम ये हमेशा याद रखें कि सब कुछ अच्छा है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा।
0: बिल्कुल।
2: ये चीज आप जितना लिखेंगे तो ये चीज प्रैक्टिकली आपके साथ होने भी लगेगा। ये होता ही है कि अगर आप 21 बार लिखते हैं दिन में, तो वो चीज आपके जहन में जाने लगती है, और जब वो जहन में जाती है, धीरे धीरे वो आपकी हैबिट, नेचर, बिहेवियर एंड देन हैबिट के साथ साथ आपका डेस्टिनी में भी आने लगती है।
0: बिल्कुल सही बात
2: तो
0: है।
2: ये लाइन आप जरूर लिखें कि सब कुछ अच्छा है और मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, तो आप वाकई में देखेंगे सब अच्छा हो रहा है। लेकिन क्योंकि आपने 3 लाइन बोली है, तो एक कहानी मैं भी सुनाना चाहूंगी। तो एक बार बीरबल के साथ अकबर ने बात करी, तो अकबर जी ने कहा कि क्या ऐसी बात हो सकती है दुनिया में जो कि जब भी पढ़ी जाए तो अपने आप को हम सहज कर सके, या फिर जो भी सिचुएशन में उसे हम अपने आप को निकाल सके। अगर मैं बहुत खुश हूँ तो भी नॉर्मल हो जाऊं, या मैं बहुत दुखी हूँ तो भी मैं अपने आप को नॉर्मल कर सकूं, ऐसा कुछ है? तो बीरबल ने उनके आगे लिख करके दिया कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो अगर ये लाइन हम सदा याद रखें कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो अगर नेगेटिव सीन में हूँ तो भी मुझे अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल।
2: और अगर मैं बहुत एक्साजुरेट फील कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा क्या कहें, ऑन क्लाउड्स या जो भी फील करता हूँ, तो तब भी मेरे पांव धरती पर आ जाएंगे अगर ये लाइन याद रहे कि ये वक्त गुजर जाएगा।
0: बिल्कुल सही बात
2: है। तो ये दूसरी बात हम अपने जहन में डालें कि ये जो चल रहा है ये सब गुजर रहा है, अगर अच्छा है तो गुजर रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से गुजारे, और अगर नेगेटिव है तो गुजर रहा है, अच्छा है, गुजर जाए। तो ये दूसरी लाइन हम ध्यान रखें। और तीसरा जो है कि मैं कहूँ, थोड़ा सा हम मेडिटेशन करना शुरू करें कि आसपास जितने भी लोग हैं उनको हम इस फीलिंग से देखें कि ये मेरा परिवार है। तो अपने परिवार से कई बार ऐसा होता है कि ऊपर नीचे चीजें तो होती हैं। अब हम इतने बड़े हो चुके हैं, हम 40s में हैं, आप 20s में हैं, तो हमारी कितनी बार मम्मी पापा से बहस हो जाती है, डांट पड़ जाती है। तो अगर ऊपर नीचे हो रहा है आसपास, तो ये मेरा परिवार ही है, और परिवार में अगर ऊपर नीचे होता है तो तोड़ा नहीं जाता है, उसको संभाला जाता है, उसे रिपेयर किया जाता है। तो चाहे जापानीज में बहुत अच्छा एक टर्म यूज किया जाता है जिसमें कोई भी चीज जो टूट जाती है वो उसे फेंकते नहीं है, वो उसे सोने की जो कहें उसे चिना देते हैं, यानी उसे जॉइंट देते हैं, और उसके बाद उस चीज को जोड़ करके वो सदा के लिए सजा देते हैं कि ये मेरे बचपन का यादगार है या समथिंग है। तो ऐसे ही रिलेशनशिप में जब भी कुछ होता है तो हम उसे मेडिटेशन, परमात्मा की याद, अच्छे थॉट्स या कुछ भी इस तरीके की भावना से उसे पुनः जोड़े, हम तोड़े।

0: फॉर एग्जाम्पल मेरा पलक के साथ बहुत बुरा एक सीन हुआ
1: जी,
0: जो मेरे सामने है, लेकिन उसको हम जीरो नहीं करें
1: जी,
0: हम उसे एक ऐसे लेवल पे लाके छोड़ दें कि जहाँ मेरी आपसे शत्रुता नहीं रहेगी।
1: बिल्कुल,
0: मित्रता नहीं है ओके फाइन, क्योंकि हम इंसान हैं, हम फरिश्ते तो हैं, लेकिन मेरी शत्रुता नहीं रहे इस

मैं हूँ आरजे पलक, आपसे इजाजत लेती हूँ। फिर मिलेंगे नया नजरिया के अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और एक नए नजरिए के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग एजी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं मेरे फरीदाबाद वालों? और देखो यार, हालचाल पूछने के लिए आ गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त आरजी अंजलि। और आप सुन रहे हैं मुझे अंजलि ऑन एयर पर रेडियो महारानी 89.6 एफएम से, जहाँ हर रोज सुबह 7 से 11 होती हूँ, बहुत सारी बातें लेकर आती हूँ, बहुत सारा एंटरटेनमेंट का डोज लेकर आती हूँ और बहुत सारी बातें करूंगी आपके साथ। लेकिन सबसे पहले क्या बनता है? सुबह वाली चाय। तो सुबह वाली चाय की पहले से प्ले लीजिए। तो आज बातें थोड़ी चटपटी होने वाली है, लेकिन चटपटी बातों के साथ साथ और क्या होने वाला है? वेदर का अपडेट मिलने वाला है, फरीदाबाद की लोकल खबरें आप तक पहुँचने वाली है, साथ ही बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है सब कुछ आप तक लेकर आऊंगी। खुद को साइबर अटैक से कैसे प्रोटेक्ट करना है ये भी आपको बताऊंगी। और लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, फरीदाबाद की पहली भी पूछने वाली हूँ, आपकी दिमाग की बत्ती भी जलाने वाली हूँ। तो बस बहुत सारी बातें हैं, एंटरटेनमेंट का बहुत सारा डोज आपको मिलने वाला है। लेकिन अभी नहीं, बहुत टाइम है, 4 घंटे आपके साथ रहने वाली हूँ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, प्यार से ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड चले और लोग उसे फॉलो ना करें। अरे सोशल मीडिया पर अगर कोई ट्रेंड आया और लोग उसे फॉलो ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब सवाल ये है कि हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है क्या? बात हो रही है अब सोशल स्यापा की, तो भाई सबसे बड़ा स्यापा ये है कि आजकल इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है जिसका नाम है 10 मैक्सिंग। यानी कि इस ट्रेंड में ना लोग जानबूझकर धूप में घंटों खड़े हैं ताकि उनकी स्किन टैन हो जाए और वो इस ट्रेंड का हिस्सा बन सके। और देखा है आपने, जहाँ कुछ दिनों पहले सनस्क्रीन का इतना ज्यादा क्रेज था कि हर कोई इतने SPF लेवल वाली सनस्क्रीन ढूंढ रहा था, लेकिन अब भाई ना तो कैप, ना तो अम्ब्रेला, ना ही सनस्क्रीन, सबका खर्चा जो है बचने वाला है, बिकॉज अब लोग टैनिंग के पीछे भाग रहे हैं और टैनिंग ना फैशन का पार्ट बन गया है। लेकिन अब बात ये है कि क्या हमें वाकई ये ट्रेंड फॉलो करना चाहिए? तो चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं। तो भाई यहाँ पर ना एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर आप बहुत देर तक धूप में रहते हैं ना, तो ये आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर हो सकता है आपको और सनबर्न और बहुत सारी प्रॉब्लम। तो भाई यहाँ पर टिप ये है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, ना कि किसी ट्रेंड को। और हमेशा याद रखिएगा कि लाइक्स एंड व्यूज आपको दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन हेल्थ रिप्लेसमेंट नहीं है। तो याद रखिएगा इन बातों को और साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: डॉक्टर कॉलिंग।
3: नमस्ते, मायसेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल, आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट। ओवर 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड अ टीन पेरेंटिंग एक्सपर्ट। सो हमारी डेली डाइट में न्यूट्रिशन बैलेंस मेंटेन करना क्यों जरूरी है? न्यूट्रिशन और फूड हमारी लाइफ का बेसिक फ्यूल है। अगर हम सही अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएंगे, सही क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी का बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ जाएगा। हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है। एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिंस एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है।
2: डॉक्टर कॉलिंग।

थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, यानी कि नौकरी के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम को भी अपने घर का रास्ता दिखाते हैं। अंजलि ऑन एयर हो और आइडियाज ना लाए, ऐसा कैसे हो सकता है। वेलकम टू रेडियो महारानी भाई। और आज का मैं बिजनेस बूस्ट लेकर आई हूँ, और आज का बिजनेस बूस्ट ये है कि नौकरी के साथ साथ ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए आज का बिजनेस बूस्ट में बात करते हैं एक ऐसे होम ग्रोन बिजनेस आइडिया की जो कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है। तो भाई अगर आपको भी कुकिंग का शौक है तो होम मेड पिकल्स और चटनी तो बिजनेस के बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, बिकॉज आजकल लोग ना घर के बने प्रिजर्वेटिव फ्री अचार और चटनियाँ काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो भाई ये बिजनेस करने के लिए ना आपको करना क्या है, शुरुआत में अपने घर के आसपास लोगों को जाकर बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने अचार की फोटोज भेजिए, इंस्टाग्राम पर रील बनाइए, और धीरे धीरे ना आपके रेगुलर कस्टमर आपसे जुड़ने लगेंगे। तो ये छोटा सा आइडिया है जो आपकी कुकिंग स्किल को बिजनेस में बदल सकता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, बड़ा बिजनेस हमेशा बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि एक छोटे से आइडिया और कंसिस्टेंसी से शुरू होता है। और इसी के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइएगा, और जब बिजनेस बढ़ जाए ना, फल फूल जाए ना, तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। और आपको बताना है मुझे याद करने के लिए कहाँ जाना है, रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर जाना है, वहाँ पर आप अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं। और साथ ही एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर, ये ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 99.6 FM, जहां मैं बात करती हूं उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की किसी भी फाइल को डाउनलोड करने का, खासकर अगर वो आपके बॉस या फिर आपके कलीग की तरफ से आए। अरे अरे, मैं आपको जॉब से निकालने का मंत्रा नहीं बता रही हूँ, बल्कि मंत्रा लेकर आ गई हूँ कि साइबर शील्ड में खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज साइबर क्राइम का ना एक और नया तरीका आ गया है मार्केट में। तो नया तरीका ये है, मार्केट में जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करने के लिए नया स्कैम कर रहे हैं। और वो स्कैम ये है, वो आपका बॉस, आपका सीनियर या फिर आपका कलीग बन करना आपको व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजते हैं, और जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करते हो या फिर ओपन करते हो ना, और फोन में हो जाता है मैलवेयर इंस्टॉल। और इसके बाद होता क्या है, इसके बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, और साथ ही पहुंच जाते हैं आपके बैंक डिटेल्स तक। और फिर क्या होता है, फिर होता है आपका अकाउंट खाली। तो अगर इस तरह के स्कैम से बचना है ना, तो किसी भी फाइल को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर अगर आपका बॉस कोई फाइल भेजता है। तो आज का साइबर मंत्र सिर्फ इतना सा है, अननोन फाइल्स को इग्नोर कीजिए, डायरेक्ट स्किप कर दीजिए, और अगर कोई फाइल आती भी है तो पहले जाकर अपने बॉस से जरूर कंफर्म कीजिए, देन फिर ही डाउनलोड कीजिए। और इस तरह से खुद भी सुरक्षित रहिए, और आज जाकर अपने पूरे ऑफिस वालों को बता दूं कि किसी भी तरह की फाइल को बिना पूछे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: भी पॉप कल्चर रन्स थ्रू द ब्लड।
1: अगर ऑफिस के लिए निकल ही गए हो तो अब ये सुनते जाओ। तो आज की अपडेट खास आपके लिए, और अपडेट ये है कि फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ अगर जाने वाले हो ना, तो जितने भी कम्यूटर्स आज मुझे सुन रहे हैं वहाँ पर जाने वाले, तो आज आपको बदरपुर बॉर्डर, NHPC चौक और मथुरा रोड पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। बिकॉज आप सभी को पता है कि भाई ऑफिस वाला टाइम है, पीक आर है, और ऐसे में ना ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो हो ही जाता है। और इसके साथ ही खास चीज का ध्यान ये रखना है कि अगर सरिता विहार के फ्लाईओवर से जा रहे हो ना, तो वहाँ पर ना रिपेयरिंग का कुछ काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको आज ट्रैफिक मिलेगा। और तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाइएगा, और अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो रूट को जरूर डाइवर्ट कर लीजिए। और बस साथ ही ये कहना चाहते हो कि ट्रैवल को एंजॉय कीजिएगा, ज्यादा गुस्सा मत कीजिएगा, बिकॉज गुस्सा करने से ना BP हाई हो जाता है, और आपको पता ही है कि आपका गुस्सा ट्रैफिक को नहीं हटा सकता है। तो ऐसे में एंजॉय कीजिए अंजलि ऑन एयर, और एंजॉय कीजिए इस प्यारे ट्रैक। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

चलिए जी अब बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ गई है। और वो क्या है, और क्या है वो खबर जानेंगे। तो चलिए जी, जिस खबर की मैं बात कर रही थी, पीएम ई बस सेवा योजना के तहत फरीदाबाद को जल्द ही 50 इलेक्ट्रिक बसेस मिलने वाली है। लेकिन आपको पता है खास बात क्या है? खास बात यह है कि बसेस के रूट डिसाइड करने के लिए AI बेस्ड सर्वे किया जा रहा है। यानी कि सर्वे में देखा जा रहा है कि किस रूट पर सबसे ज्यादा पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, किस टाइम ट्रैफिक ज्यादा होता है और किन एरियाज को बेहतर बस कनेक्टिविटी की जरूरत है। तो इसका मोटिव सिर्फ ये है कि बसेस उन्हीं रूट्स पर चलाई जाएंगी जहां लोगों को उनकी सबसे जरूरत है। ठीक है, कितनी कमाल की बात। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो फरीदाबाद के लोगों का सफर और भी ज्यादा इजी और कंफर्टेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मिल सकता है। उम्मीद है इस इनिशिएटिव से ट्रैफिक का प्रेशर भी कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक नई रफ्तार मिलेगी। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस ट्रैक के बाद

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है, वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक दे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं, वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर

चोरी के किस्से तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने वाली हूँ ना, वो सुनकर ना आप कहेंगे भाई क्या ही चोर बनोगे, तो मेरा तुमसे ना हो पाएगा। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और क्लिप पता क्या है, चोर आए चोरी करने के लिए, और तो भाई चोरों ने सोचा कि क्यों ज्यादा महंगी चीजें उठाकर ले जानी है ना, एसी का आउटडोर यूनिट ही उठाकर ले जाते हैं। बड़े प्यार से दिन दहाड़े चोरों ने वो यूनिट उठाया और लेकर चले गए, और वो जो आस पास के लोग है ना वो बहुत प्यार से देख रहे हैं। लेकिन जब ये क्लिप वायरल हुआ ना, तो लोगों का कहना ये है कि सीसीटीवी लगाने का फायदा ही क्या हुआ जब आपको खुद बैठकर उसकी मॉनिटरिंग करनी और सिक्योरिटी करनी है। तो देखिए भाई, चोरी तो हो चुकी है, लेकिन इंसिडेंट ना हमें कुछ सिखा कर जाता है। और पता है इससे हमें क्या सीखने की जरूरत है, चाहे घर हो या फिर हो ऑफिस, बाहर लगे जितने भी एसी आउटडोर यूनिट इन्वर्टर और दूसरे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है ना, उनको प्रॉपर लॉकिंग और सर्विलेंस के साथ सिक्योर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चोर ताला तोड़ कर अंदर से चोरी करके ले जाए। कुछ लोग बाहर की चीजें भी उठा कर ले जाते हैं, तो भाई थोड़ा सा चोरों के एंगल से सोचने की कोशिश करो और अपने घर की चीजों को सुरक्षित रखो। और साथ ही सुनते रहो रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट। सबवीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी, और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

हेलो हेलो जी, आज अंजलि इन द हाउस और बातें करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी की, लेकिन उससे पहले ये हो जाए देखिए भाई, मैं अक्सर आती हूँ और ये बताती हूँ कि मार्केट में ना किस तरह का स्कैम सामने आ गया, लेकिन आज बिग स्कैम लेकर आई हूँ। और ये स्कैम ना खासकर उन दुकानदारों के लिए है जो अपने गले पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना इतने मशरूफ हो जाते हैं खुद में कि ध्यान ही नहीं देते कि किस तरह का स्कैम उनके साथ हो गया। तो अगर आप भी दुकान चलाते हैं या फिर QR कोड से पेमेंट लेते हैं, तो आज की साइबर शील्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, अगर मैं आजकल के साइबर क्राइम की बात करूँ ना, तो आजकल मार्केट में ना एक नया UPI स्कैम सामने आ गया है। और स्कैम कुछ इस तरह से है, स्कैमर्स आपके पास आएंगे फोन पे जैसी दिखने वाली फेक ऐप लेकर, और आपको दिखाएंगे कि जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई है, और आप देख लीजिए ट्रांजेक्शन ID भी आपको नजर आएगी, सब कुछ ऐसे ही नजर आएगा जैसे कि एक एक्चुअल ऐप में होता है, लेकिन इससे आपके अकाउंट में कोई भी पैसे क्रेडिट नहीं होंगे। यहीं पर हम लोग क्या है, गलती कर देते हैं, सिर्फ वो डिस्प्ले देखकर हमें लगता है कि हाँ ट्रांजेक्शन तो हो ही गई है, लेकिन इस तरह के स्कैम से अब आपको बचना है। पहले चेक करना है आपके अकाउंट में पेमेंट हुई है, ट्रांजेक्शन हुई है, देन उसके बाद ही इन स्कैमर्स को जाने देना है अपनी दुकान से। तो भाई आज का साइबर मंत्र जरूर याद रखेगा, स्क्रीन नहीं अकाउंट चेक कीजिए। सिर्फ कस्टमर का स्क्रीनशॉट या फिर सक्सेसफुल मैसेज देखकर भरोसा कभी नहीं करना है। पेमेंट देने से पहले अपने बैंक अकाउंट या UPI ऐप में अमाउंट क्रेडिट होना जरूर वेरीफाई करना है, बिकॉज थोड़ी सी सतर्कता बड़ी ठगी से बचा सकती है। तो स्मार्ट बनिए, आलसी नहीं। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

बहुत सारी मैं बातें यहाँ पर लेकर आती हूँ, लेकिन जब मैं खुशखबरी लेकर आती हूँ तो मुझे खुद को अच्छा लगता है। वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज अंशु अंजलि और आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर अंजलि ऑन एयर। तो भाई फरीदाबाद वाले हो, आपके लिए ना एक बहुत पॉजिटिव अपडेट मैं लेकर आई हूँ, लेकिन अभी इस प्लान में थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये प्लान अगर अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चला ना तो फ्यूचर में दिल्ली टू फरीदाबाद के बीच का जो सफर है वो और भी ज्यादा फास्ट और कन्वीनियंट हो सकता है। तो भाई नमो भारत को लेकर बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं एंड ऑफिशियल रूट्स और स्टेशन लोकेशंस पर काम भी किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से फरीदाबाद के कई सेक्टरों को बेटर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है, यानी कि जितने भी डेली कम्यूटर्स का ट्रेवल टाइम है वो अब कम हो सकता है, खासकर जो लोग डेली फरीदाबाद टू दिल्ली जाते हैं। अब सोचिए अगर आप दिल्ली जा रहे हो ना और मेट्रो से जा रहे हो तो आपको पूरा घूम कर जाना पड़ता है, आपको 2.5 घंटे 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। और वहीं सेम अगर आपको गुरुग्राम नोएडा जाने वाला हो ना तो लिटरली इतना टाइम लगता है कि इतने देर में आप ऋषिकेश पहुंच जाए, 6 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी आने जाने में। तो अगर ये कनेक्टिविटी आ गई तो देखिए कितना फास्ट आपका काम हो जाना है, कितना कन्वीनियंट हो जानी है सारी चीजें। तो भाई स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ सफर नहीं बल्कि हमारे ट्रैफिक और पॉल्यूशन दोनों को भी कम करने में हेल्प करता है। तो ये थी फरीदाबाद की आज अच्छी खबर और ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं लेकर आऊंगी, लेके तब तक के लिए इंतजार कीजिए और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक का।

तो चलिए फिर अब वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती जलाने का। जैसे कि पहले ही कहा था कि वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती जलाने का, तो बात कर लेते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की, जो है फरीदाबाद की पहेली। तो आज मैं एक पहेली लेकर आ गई हूँ। मैं फरीदाबाद की एक ऐसी जगह हूँ जहाँ सुबह सुबह लोग वॉक करने आते हैं, शाम को फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं और वीकेंड्स पर मेरी खूबसूरती देखने वालों की भीड़ लग जाती है। कभी मुझे फरीदाबाद की शान कहा जाता है और जैसे ही लोग मुझे देखते हैं तो नेचर के करीब पहुंच जाते हैं। अब फटाफट से बताइए मैं कौन हूँ, और बताने के लिए आपको पता है ना कहाँ जाना है। जाना है आपको रेडियो रानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना जवाब बताइएगा और देखते हैं कौन फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानता है। और तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक दैट्स म्यूजिक ब्रेक के बाद।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

कई बार ना कई चीजों को सुनकर देखकर ऐसे लगता है कि ये तो कभी नहीं पता था ये कैसे हुआ। तो बस ऐसी बातें करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ और टाइम हो गया इंटरेस्टिंग फैक्ट का। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आज मेरे पिटारे में आखिर ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कई बार ना हमें ऐसी चीजें पता चलती है जिन्हें सुनने के बाद ना सीधा ये निकलता है सही में ऐसा भी हो सकता है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपको पता है ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। अब आपको आपके एक्स की याद आ गई होगी क्योंकि वो आपका जो एक दिल था वो भी तोड़कर चली गई ना। कोई बात नहीं, आज अपना दिल साइड रखकर ऑक्टोपस के 3 दिल की बात सुन लेते हैं। अगर मैं 3 दिल की बात करूँ तो तीनों दिल का काम है, 2 दिल ऑक्टोपस के गिल्स तक खून पहुंचाते हैं और जो तीसरा दिल है वो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। तो ये जो तीनों दिल है ना वो अपना काम बराबर करता है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब ऑक्टोपस तैरता है ना तो उसका जो मेन दिल होता है वो कुछ देर के लिए धड़कना बंद कर देता है और यही रीजन है कि ऑक्टोपस बहुत देर तक तैरना पसंद नहीं करता। नेचर के पास वाकई कमाल का सरप्राइज, और कई बार लगता है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी करती है तो जरूर कहते हैं। अब आप ये सोचो अगर ऑक्टोपस की गर्लफ्रेंड उसका दिल तोड़ भी देना तो फिर भी उसके पास 2 दिल है तो वो 2 दिल से काम चला लेगा, लेकिन आपके पास एक ही दिल है तो अपने दिल का ख्याल जरूर रखेगा। और पता है ना हार्ट हेल्थ का ख्याल कैसे रखता है, तो बस हो जाइए शुरू और साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

0: प्यार करते हो मुझसे? 7 साल लड़के एडजस्ट किया, इसका ये मतलब नहीं कि सारी जिंदगी एडजस्ट कर पाएंगे। शादी के बाद ब्रेकअप नहीं, डिवोर्स होता है। मैं हमेशा तुमसे ब्रेकअप करती थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम कहीं नहीं जाने वाले। तुम हमेशा मेरे लिए परफेक्ट थे, शायद मैं ही तुम्हारे लिए गलत।
1: अगर मैं ब्रेकअप करूंगा तो तुम मुझे रोकोगे?
0: तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं?
1: तुम क्या चाहते हो?
2: तुझ पे ही एतबार है, तू ही मेरा राजदार है।
0: प्लीज यहां से चले जाओ, मुझे फिर से

0: वो निखिल भागा जा रहा है और तू यहाँ बैठा है।
1: आप शांति से बैठ जाइए ना, वो घूम फिर के इसी मंडप में आ जाएगा, और वैसे भी इस बला से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा, बैठ जाइए।
2: By the way, he is joining the IPS.
1: अभी? नहीं, शादी के।

आपने ये तो सुना ही होगा, एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन ये तब अच्छा लगता है जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो, और जब हमारे साथ कुछ खराब चीजें होती है ना, तो ये लाइन सबसे ज्यादा खराब लगती है। तो आज मैं आ गई हूँ आपको साइबर स्मार्ट बनाने के लिए, और साथ ही आज का जो केस है ना, वो हमारे लिए ना एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी लेकर आया। वार्निंग ये है, ऑनलाइन फ्रॉड की कोई एज लिमिट नहीं होती। तो जयपुर से आज का इंसिडेंट आया, और इंसिडेंट में ये है, 90 साल की एक बुजुर्ग महिला को फेक मैरिज ब्यूरो एम्प्लॉय ने शादी के नाम पर कॉन्टेक्ट किया और उनसे करीब 9 लाख रुपए की ठगी कर ली। लेकिन इस प्रेम कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इनके बेटे को ये पता चला कि कोई इनकी मम्मी से बार बार पैसे मांग रहा है। और अगर बेटे की एज मैं आपको बताऊँ ना, तो आप ये बोलेंगे कि बेटा तो बहुत ही बड़ा है। बेटे की एज है 79 ईयर्स। लेकिन जब उन्हें ये पता चला ना कि कोई उनके एल्डरली मदर से पैसे की डिमांड कर रहा है, तब उन्हें पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो देखिए, आज का इंसिडेंट हमें ये बताता है, अपने घर में पेरेंट्स या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एक बार जरूर बात कीजिए। उन्हें ऑनलाइन कोई भी शादी, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट या फिर इमरजेंसी के नाम पे कोई भी उनसे पैसे मांगता है, तो उन्हें जरूर बताइए कि पहले प्लीज वेरीफाई करें। और आपको बताए ना, साइबर स्कैम से बचने का गोल्डन रूल सिर्फ यही है, वेरिफिकेशन पहले, पेमेंट बाद में। स्टे अलर्ट, स्टे साइबर स्मार्ट। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: हेलो हेलो जी, फिर से लौट आई हूँ मैं और अब बातें नहीं करने वाली है। अब मैं ना पहेली का जवाब जानने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने एक पहेली पूछी थी और पहेली थी फरीदाबाद की ऐसी कौन सी जगह है जिसे हर कोई पसंद करता है। तो वक्त हो गया है हमारे फरीदाबाद की पहेली का जवाब जानने का, लेकिन उससे पहले ना मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ हमारे सभी लिसनर्स का, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे जवाब आए हैं और बहुत सारे जवाब सही भी हैं। लेकिन जो जवाब सबसे पहले आया, बात करते हैं उनकी। चलिए पहले सुनते हैं कि इस पहेली का आखिर जवाब क्या है।
1: हाय अंजलि, गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम पलक है। अभी तुमने जो पहेली पूछी थी वो तो फरीदाबाद की बहुत फेमस जगह है। वहां तो मैं ना अपने बचपन से जाती आ रही हूँ। अपनी फैमिली के साथ ना अलग ही वाइब है उस जगह की। तो यार वो जगह है फरीदाबाद की बड़कल झील। थैंक यू।
0: थैंक यू पलक, बहुत अच्छे से फरीदाबाद को जानते हो। और जैसे कि आपने बताया ना कि आपका बचपन बीता है यहाँ पर, मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से आपने बचपन यहाँ पर बिताया है ना, ऐसे ही पूरी जिंदगी आप इस फरीदाबाद की जगह से जुड़े रहे और साथ ही एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ मी टाइम यहाँ पर। और इसी के साथ ही आपका आंसर एकदम सही था। ये बताता है कि आप फरीदाबाद को कितने अच्छे से जानते हैं। लेकिन जिन्होंने आज अपना आंसर मिस कर दिया है, टेंशन मत लीजिए, कल फिर से लौटूंगी एक और नई पहेली के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

चलिए जी बात कर लेते हैं फिटनेस वाले फंडे की। देखिए ये तो हम लोगों ने सुना है कि प्रोटीन ज्यादा खाना ना हमारे लिए अच्छा होता है, हेल्दी होता है, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि प्रोटीन कम खाना भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है? नहीं सुना ना। आज यही बताने के लिए आपको आ गई हूँ। और एक ना रिसर्च सामने आई, और जब ये रिसर्च आई ना तो पता चला 300 से ज्यादा स्टडीज करने के बाद रिसर्चर्स का कहना है कि कुछ सिचुएशन में प्रोटीन की लिमिटेड मात्रा मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बना सकती है और बायोलॉजिकल एजिंग की स्पीड को धीमा करने में हेल्प कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अपनी मर्जी से अपना प्रोटीन इनटेक कम कर दे, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज इसके पीछे एक रीजन है, और रीजन क्या है, हर इंसान की बॉडी और उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होती है। इसलिए सोशल मीडिया या हेडलाइंस देखकर डाइट चेंज बिल्कुल मत कीजिए। अपनी एज, अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल के हिसाब से डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेकर ही अपनी डाइट में जो है चेंजेस कीजिए। और बस यही कहना चाहती हूँ, हेल्दी चॉइसेस लीजिए, इन्फॉर्मड चॉइसेस लीजिए, और साथ ही सुनते रहिए अंशली ऑन एयर। मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि जैसा हमारे को पिक्चरों में मूवीज में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस्ड इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है। वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज में मन नहीं रखता। वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको। और ज्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हम पॉजिटिवली कैसे सोच पाएंगे? हमारे को हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो तुरंत जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकियाट्रिस्ट से मिले।

मैंने ना ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो माइग्रेन के दर्द को बोलते हैं कि क्या है, ज्यादा से ज्यादा सर दर्द ही तो होता है, इतनी ड्रामे करने की क्या जरूरत है। तो भाई उनके लिए मैं आज का फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई हूँ, उन्हें बताने के लिए आ गई हूँ कि माइग्रेन का दर्द जो है बिल्कुल भी नॉर्मल हेडेक नहीं होता है। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं, डॉक्टर्स के मुताबिक माइग्रेन को इग्नोर करना, दर्द शुरू होने के बाद भी मेडिसिन को लेने में देर करना, बार बार पेन किलर्स लेना और प्रॉपर नींद ना लेना, ये सब माइग्रेन को और भी बढ़ा सकता है। इसलिए जब भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले अपने ट्रिगर को पहचानिए, टाइम पर डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, बिकॉज जो माइग्रेन का दर्द है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको कभी कभी ब्लर दिखने लग। अब सोच कर जरूर देखिएगा कि वो जो दर्द है वो कितना पीक पर होता है कि जब इंसान को धुंधला धुंधला नजर आता है, वो जो गाना है ना, सब कुछ धुंधला धुंधला, तो भाई लगता है वो माइग्रेन के दर्द को लेकर ही बना है। तो हमेशा याद रखिए, हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता और हर माइग्रेन को इग्नोर करना भी सही नहीं होता। अपने हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तभी तो एनर्जेटिक रहेंगे। और साथ ही एंजॉय कीजिए, इसलिए ऑन एयर मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 9.6 एफएम, जहां मैं बात करती हूँ उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बिट्रेयल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

और बस उसी के साथ आज कंचली ऑन एयर यहीं तक था। बहुत सारी बातें की मैंने आज आपसे, बहुत सारी चीजें जानी और बहुत कुछ बताया भी। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि आखिर मैं टिफिन में क्या लेकर आई हूँ। बिकॉज जब मैं ऑफिस आती हूँ ना, तो मेरा पहला सवाल अपने कलीग्स के साथ यही होता है कि भाई आज क्या लेकर आई हो टिफिन में। और जैसे मुझे पता चलता है ना कि टिफिन में कुछ टेस्टी आया है, तो मैं खा जाती हूँ उनका सारा टिफिन। कह रहा है आज अपने टिफिन की मैं बात करूँ ना, तो आज मेरे टिफिन में है सैंडविच और कोल्ड कॉफी। अब आप बोलोगे कि क्या यार अंजलि, हमें तो फिटनेस वाला फंडा देकर जाती है और खुद सैंडविच खाती हो। तो भाई देखिए, मेरा सैंडविच बड़ा ही हेल्दी है, ब्राउन ब्रेड लेकर आई हूँ, उसके साथ में मैं वेजीज वेज सैंडविच लेकर आई हूँ। अगर कोल्ड कॉफी की मैं बात करूँ ना, तो आलमंड मिल्क में है मेरी कोल्ड कॉफी। देखा कितना हेल्दी और टेस्टी सैलेंच लेकर आई हूँ मैं। खैर, आप क्या लेकर आए हैं मुझे जरूर बताइएगा। और पता है ना बताने के लिए कहाँ जाना है? जाना है आपको रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर वॉइस मैसेज भेजना है और साथ ही एंजॉय करना है रेडियो महारानी पर शो को। और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

Namaste, myself Dr. Rajni Binwan. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है. डॉक्टर कॉलिंग.

0: सिनेमा लवर्स, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 9.6 एफएम, जहां मैं बात करती हूं उन मूवीज, शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है, द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स, मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।
1: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। बात करते हैं अब यहाँ पे विजन क्वेस्ट की, जहाँ पे इसका ट्रेलर रिलीज हुआ D23 2026 और ये सीरीज 14th ऑफ अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली है, जो कि वर्ना विजन ट्रिलॉजी का फाइनल चैप्टर होने वाला है। बात करें विजन की पहचान का सवाल, व्हाइट विजन अपने अतीत यादों को समझाने की कोशिश करता है, क्या वांडा के साथ परिवार बना रहने वाला है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है अभी ट्रेलर देख करके। तो बाकी सीरीज रिलीज होगी तभी पता चलेगा। जहाँ पे अल्ट्रॉन की भी वापसी है, जेम्स प्रैडो फिर से अल्ट्रॉन के रूप में वापसी आने वाला है, ये फैंस के लिए एक बहुत बढ़िया बात है। फैंस को जाएंगे चलिए अल्ट्रॉन की वापसी हो रही तो इस बार कुछ ज्यादा ही खास होने वाली है सीरीज। डायरेक्टर टेरी 8 एपिसोड्स में पूरी सीरीज लेकर के आ रहे हैं, रहेगा इंतजार 14th of October का कि कहानी स्ट्रीम की जाने वाली है। बाकी ऐसी अभी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और ट्रैक।

इसी खूबसूरत गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं अब सिनेमा के गलियारे से प्रलय के बारे में। रणवीर सिंह की अगली बड़ी फिल्म प्रलय जो है उसकी शूटिंग स्टार्ट की जा चुकी है और रणवीर सिंह के साथ यहाँ पे बात करें कल्याणी प्रिया दर्शन साउथ की एक्ट्रेस बॉलीवुड में डेब्यू भी करने जा रही है। एक तो साउथ की एक्ट्रेस का बॉलीवुड में डेब्यू और दूसरा रणवीर के साथ एक नई जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर देखने को मिलने वाली है। जय मेहता के डायरेक्शन में बन रही ये कहानी जहां पर बात करें रणवीर एक डिफरेंट किरदार में ही सबके सामने आएंगे इस बार। जहां बात करें कि एक शादीशुदा जोड़े के सर्वाइवल की कहानी को दिखाया जाने वाला है सिल्वर स्क्रीन पर और इस कहानी में और भी बहुत बड़ी स्टार कास्ट होगी जहां भी सिर्फ दो चेहरों की अनाउंसमेंट की गई है। शूटिंग स्टार्ट है और कहा जा रहा है 2027 में मिड या 2027 की एंड तक इसको रिलीज किया जा सकता है सिल्वर स्क्रीन पर। रहेगा इंतजार बाकी ऐसी अभी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और ट्रैक

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक दे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है कर के दिखा। सुन में आया है तू, मरती है हम पे, मर के दिखा।

सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु, लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर।

मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद याद मुझे आया है कैसे दिलबर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान दी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। आज सिनेमा के कैलेंडर में हम बात कर रहे हैं मधुर भंडारकर की, जहाँ उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, वो सोसाइटी के उन पहलुओं पर सवाल उठाती है जिन्हें अक्सर हम स्क्रीन पर देखना नहीं चाहते। फैशन इंडस्ट्री हो, मीडिया या कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या पॉलिटिक्स, उन्हें हर जगह के डार्क साइड के अपने सिनेमेटिक अंदाज में ऑडियंस के सामने रखा। या नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर मधुर भंडारकर की अगर बात की जाए, बॉलीवुड तक का सफर भी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं था। उन्होंने फिल्म मेकिंग की फॉर्मल जर्नी से पहले मुंबई में वीडियो कैसेट लाइब्रेरी में काम किया और वहां से सिनेमा को करीब से समझने का मौका। 1999 में फिल्म त्रिशक्ति से उन्होंने डायरेक्शन में डेब्यू किया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी 2001 के फिल्म चांदनी बाग। यहाँ पे बात करें तब्बू और अतुल कुलकर्णी स्टार, इस फिल्म ने मुंबई के डांस बार कल्चर और वहाँ की जिंदगी को एक रियलिस्टिक नजरिए से दिखाया, जहाँ फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला। मधुर भंडारकर की ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, लेकिन उस पर एक और खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन रेडियो महाराष्ट्र।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोर्टल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां बात कर रहे हैं मधुर भंडारकर की, जो उनकी फिल्मोग्राफी में ऐसी फिल्में हैं जिन्हें बॉलीवुड में सीरियस सोशल को एक अलग आइडेंटिटी दी। पेज थ्री ट्रैफिक सिग्नल, फैशन से लेकर कॉर्पोरेट और हीरोइन तक। पेज थ्री ने मुंबई के हाई सोसाइटी और मीडिया कल्चर की रियलिटी सामने रखी। कॉर्पोरेट ने बिजनेस वर्ल्ड के पावर गेम को एक्सप्लोर किया और फैशन ने ग्लैमर इंडस्ट्री के बिहाइंड द सीन्स स्ट्रगल को स्पॉटलाइट किया। फैशन की प्रियंका चोपड़ा कंगना रनौत की परफॉर्मेंस को भी खूब सराहा गया। मधुर भंडारकर को इंडियन सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए प्रेस्टीजियस अवार्ड मिल चुके हैं। चांदी बार पेज थ्री और ट्रैफिक सिग्नल के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उनकी फिल्मों की खासियत ये है कि वो ग्लैमर के पीछे की रियलिटी दिखाने से नहीं डरते। उनकी फिल्में ऑडियंस को सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि एक अनकंफर्टेबल सवाल भी दे जाती है, जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या वो हमारी सोसाइटी की असली तस्वीर है। बाकी ऐसी और भी चर्चा करता हूँ सिनेमा के गलियारे से, लेकिन आज नहीं, उससे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह। करूँगा ढेरों बातें, तब तो सुन रहे रेडियो महारानी 89.6 FM को छोड़ के।

0: सिनेमा का कैप्सूल।
1: तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वही अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: पर्स।
1: कभी कभी ना बस मन करता है कि कोई सामने बैठा हो, कुछ पूछे नहीं, कोई एडवाइस ना दे, बस थोड़ी देर बात करे और मूड हल्का हो जाए। तो चलिए आज वो काम मैं कर देती हूँ। हेलो फरीदाबाद, मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं द हैप्पी आवर्स 89.6 रेडियो महारानी पर। अब हैप्पी आवर्स का मतलब है खुश होना, और आपको खुश रखने की जिम्मेदारी अगले 2 घंटे के लिए मेरी है, क्योंकि अगले 2 घंटे बिल्कुल अपनी वाली गपशप होगी। थोड़ी मस्ती, थोड़ी हंसी, कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आप सभी को बताऊंगी, और बीच बीच में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको सुन के लगेगा कि यार मेरे साथ ये रोज होता है। और सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आज मेरे जेंजी डिक्शनरी के पिटारे में क्या है। उप्स, सॉरी, आज मेरी डिक्शनरी में क्या है, क्योंकि मैं भी एक जेंजी हूँ ना, तो मैं समझ सकती हूँ कि हम जेंजीज को ना इससे कैजुअली बात करना नहीं पसंद। हमें चाहिए कुछ तड़कता भड़कता, अगर नहीं भी तड़कता भड़कता हो तो उसको तड़कता भड़कता कैसे बनाया जाए, कुछ नया कैसे लाया जाए। और आज जो वर्ड मैं डिकोड करूंगी, शायद वो मिलेनियल्स की डिक्शनरी में कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि इसके बाद आप अपनी डिक्शनरी में ये एड ऑन कर लेंगे। तब तक के लिए ये गाना सिर्फ आपके लिए। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: बर्ड्स।
1: ओके, सो मैं खुद एक जेंजी हूँ, तो एक चीज तो मैं मान ही सकती हूँ कि हम लोगों ने ना नॉर्मल बात करने के भी नए नए वर्ड्स बना रखे हैं, क्योंकि पूरी बात कहने से अच्छा है उसको शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि हम आलसी भी है ना। और मुझ जैसा आलसी इंसान मिल जाए जो पूरी बात रखने में बहुत आलस खाता है, तो उसके लिए ये जेंजी स्लैंग्स बहुत यूजफुल होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड सुनकर मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी डिक्शनरी अभी अपग्रेड होना बाकी है। और ऐसा ही एक वर्ड निकल के आया है जो मेरी डिक्शनरी में अभी तक नहीं था, लेकिन अब मैं इसको ऐड कर लूंगी और आपकी डिक्शनरी में भी ऐड करवाऊंगी। और वर्ड है योलो, यानी कि यू ओनली लिव वंस। वो कहते हैं ना, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार होता है और शादी भी एक बार होती है। लेकिन आजकल तो खैर उस बात पे नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं सिंपली बताऊं तो वो ये है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो थोड़ा जी भी लो, क्योंकि ये परेशानी, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉब्लम, ये तो डेली लाइफ का रूटीन है ना। इसके चक्कर में आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना मत भूलिए। और इसको समझने के लिए मुझे एक ही मूवी याद आती है, और वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्योंकि इसमें ये जो चिल वाइब दिखाई ना, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप, नए एक्सपीरियंसेस, अपने फियर्स को फेस करना और हर चीज को बाद में कर लेंगे बोल के पोस्टपोन ना करना, तो हम जेंजीज ने इतनी बड़ी फिलॉसफी को छोटे से वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया, और वो वर्ड योलो है। और अगर आप भी मेरी तरह जेंजी हैं और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई जेंजी स्लैंग्स यूज करते हैं, तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। नंबर है 9654896896। दोबारा बता देती हूँ, नंबर है 9654896896। और अब वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद बात करेंगे जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। समझ गए ना आप? जी हाँ, मीम्स की। जी हाँ, मीम्स की। तब तक आप ये गाना एंजॉय कीजिए और स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका एस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

जब से ये AI आया है ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद ना शादी के जो मंत्र वंत्र होते हैं ना, वो भी AI पढ़ने लगेगा। और मैं ये चीज अपनी शादी के लिए इमेजिन करती हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो क्या शादी होगी एकदम मेमोरेबल। खैर, और इसी शादी को लेकर याद आया कि समय रहना की ना AI जनरेटेड वेडिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि एक पूरी शादी जिसमें समय रहना, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, साहिबा बाली और रणबीर अलाबादिया जैसे क्रिएटर्स नजर आ रहे हैं। पर ट्विस्ट ये है कि असलियत में शादी नहीं हुई है, ये शादी AI ने करवाई है, क्योंकि ये वीडियो AI जनरेटेड है। और ये वीडियो मुझे इतना रियलिस्टिक लगा कि मैंने समय का पूरा अकाउंट स्क्रॉल कर लिया, उसकी स्टोरीज देख ली कि एक्चुअल में शादी हो गई है क्या, ये न्यूज मुझे इतनी लेट क्यों पता लग रही है। और अब AI का यही तो कमाल है कि फोटो वीडियो सब कुछ इतना रियल बना रहा है कि सामने वाला एक्चुअली में कंफ्यूज हो जाए कि ये रियल पर्सन है कि AI जनरेटेड। वैसे समय भाई की शादी तो AI ने करवा दी, अब रियल में कब होती है ये तो वही बता सकते हैं। चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद मिलते हैं वही जो आसपास हमेशा भटकते रहते हैं, जी हाँ, चार लोग क्या कहेंगे में। तब तक ये गाना एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

0: कुछ हटके।
1: Well, then what happened?

0: लवर्स।
1: आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी जिंदगी के असली सीसीटीवी कैमरा कौन है? मुझे तो ये चार लोग ही लगते हैं, क्योंकि ना नया करियर चूज करना हो, कुछ अलग पहनना हो, सोलो ट्रिप का प्लान हो, हर जगह ये चार लोग बिना इनविटेशन के पहुंच जाते हैं। हमने बुलाया, हमने तो नहीं बताया आपको। खैर, हमारे घर वाले भी कम नहीं है ना, हर चीज तो इन लोगों को बतानी होती है, फिर ये लोग अपने ओपिनियन लेकर आ जाते हैं। और जो दो चार लोग बोलेंगे भी तो इनकी ओपिनियन परमानेंट थोड़ी होती है, आज आपको बोलेंगे, कल किसी और को जाकर बोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उनकी अप्रूवल के चक्कर में ना हम अपने ड्रीम्स, अपनी चॉइसेस और अपनी खुशी को पीछे कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ही वही चलता रहता है कि अगर मैंने ये कर दिया बिना किसी परमिशन के तो ये क्या ही सोचेंगे। लेकिन हाँ, अगली बार ये दिमाग में आए ना कि लोग क्या कहेंगे, तो एक बार खुद से पूछ लेना कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। और हाँ, अगर आप अपने ओपिनियंस पे चलेंगे तो आपकी ही जिंदगी खूबसूरत होगी। तो अब आपका डिसीजन है कि लोगों की सुननी है या अपने मन की, क्योंकि आखिर में लोगों को तो बस बात करनी है, जिंदगी तो आपको जीनी है ना। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर ये लोग इतने इम्पोर्टेंट हैं तो मेरी EMI वगैरह भर दें यार, बहुत ज्यादा हो गई है। फिलहाल वक्त हो गया है एक गाने का, गाने के बाद मिलते हैं पॉपकॉर्न अपडेट में, देखते हैं आज क्या पक रहा है बॉलीवुड में, बताऊंगी थोड़ी देर में। तब तक के लिए ये गाना आपके लिए।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: बर्ड्स।
1: अच्छा, आपके ग्रुप में भी कोई ऐसा दोस्त है ना जो हर हॉरर मूवी के बीच में बोलता है कि ये भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता भूत वूत में। तो एक बार ना उसको ये मूवी दिखा देना। स्टोरी है चार दोस्तों की जो फेक बाबा और घोस्ट हंटर्स का सच सामने लाते हैं। इनका मानना है कि भूत नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन फिर इनकी मुलाकात होती है एक घोस्ट हंटर से जो देता है एक अजीब सा चैलेंज, और वो चैलेंज होता है सिर्फ 3 दिन का। और वो घोस्ट हंटर कहता है कि अगर 3 दिन में कोई आत्मा नजर नहीं आई तो 4th दिन तुम जो बोलोगे वही होगा। और बस उस चैलेंज के बाद स्टोरी ऐसी पलटती है कि हर कुछ देर में आपकी थ्योरी बदलती रहेगी इसको देखने के बाद, क्योंकि आपको जब लगेगा ना कि अब मुझे ये सीन समझ आ गया, ये मूवी उसी के बाद एक नया ट्विस्ट लेगी। और एंडिंग जैसा आप गेस करोगे ना उसके बिल्कुल अपोजिट है। और वैसे भी हम जो एंडिंग सोच रहे होते हैं ना वो मूवी में कभी नहीं होती। तो मिस्ट्री, सुपर नेचुरल और माइंड बेंडिंग थ्रिलर पसंद है तो ये मूवी जरूर देखना। और मूवी का नाम है ईशा और ये अमेजोन प्राइम और यूट्यूब पर अवेलेबल है। और मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर आपको भी 3 दिन का ये चैलेंज मिले तो एक्सेप्ट करोगे या पहले ही भाग जाओगे? क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि मुझे भूत वूत से डर नहीं लगता, उसको तो सबसे पहले देखनी चाहिए ये मूवी। खैर, वक्त हो गया एक गाने का, और गाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज स्टाइल स्टूडियो में नया क्या है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: एक्सपर्ट्स।
1: अच्छा, ब्राइडल शॉपिंग में सबसे पहला सवाल यही होता है ना कि लहंगा फाइनल किया क्या। लेकिन अगर आप ब्राइड टू भी हैं तो एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि 2026 में ब्राइडल फैशन में एक मजेदार शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और वो ये है कि लहंगे के साथ साथ साड़ीज भी ब्राइड्स की फेवरेट बनती जा रही हैं। और ऑनेस्टली साड़ी का ना अपना ही चार्म है। हैवी लहंगे के कंपैरिजन में साड़ी में मूवमेंट इजी होती है, कंफर्टेबल फील होता है, और शादी के पूरे फंक्शन में आप थोड़ा फ्रीली मूव भी कर सकती हैं। जैसे कि रश्मिका मंदाना ने भी अपनी शादी में साड़ी ही पहनी थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और अगर स्टाइलिंग की बात करी जाए तो ट्रेडिशनल रैप रखो तो वो एलिगेंट, और स्टेटमेंट ब्लाउज और ज्वेलरी के साथ जाओ तो एकदम मॉडर्न ब्राइडल लुक आएगा। मतलब ब्राइड बनना है तो जरूरी नहीं कि आप लहंगे में ही ब्राइडल लगोगे, एक ब्यूटीफुल साड़ी भी पूरी ब्राइडल वाइब दे सकती है। तो फ्यूचर ब्राइड, अगर आपकी शादी की शॉपिंग चल रही है तो साड़ी को जरूर लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल वक्त हो गया एक गाने का, गाने के बाद चलेंगे अपनी फरीदाबाद की गलियों में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: पेशेंट दिया कर सुन पे मेरी।
3: किया बेबे।
2: बेबे
3: लड्डू भाई तू भी मैं चलिया अपने कबूतर दाने पा।
4: तू कबूतर ही देखता रही, तू कबूतर ही ना देखी।
2: मेरे नाल ही टीचर करी।

अच्छा, हमारे साथ अक्सर ये होता है ना कि दोस्तों के साथ बैठकर अच्छा सा कुछ खाओ, अच्छा सा कुछ पियो और बिल देखने के बाद हमें हार्ट अटैक भी ना आए। तो आज का फरीदाबाद लोकल बस फूडीज के नाम है, आप सेक्टर 28 गीता कॉलोनी के पास हैं, तो एक जगह ट्राई कर सकते हैं जिसका नाम है द बेटर फूड। यहाँ का गाना मुझे बहुत पसंद आया और मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसके प्राइजेस बहुत रीजनेबल हैं। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाएंगे तो आपको अपनी जेब से पैसे देने में बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि ये इतना कॉस्टली नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ऑर्डर करना चाहिए यहाँ पे, तो सबसे पहला रिकमेंडेशन जो मेरा होगा वो है रेड सॉस पास्ता और कोल्ड कॉफी। वाह वाह वाह, खाके जो आनंद आया था ना, मैं बता नहीं सकती। और इसकी क्वांटिटी भी इतनी सही थी कि आपका पेट भर जाए आराम से। तो दोस्तों के साथ अगर कोई आपका प्लान बन रहा है तो आप ये जगह ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई करके बताइएगा कि आपको वहाँ और आप बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

0: अंग्रेजी में ना एक कहावत है कि अ जर्नी ऑफ अ थाउजेंड माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, मतलब हजारों माइल्स का सफर भी एक छोटे से स्टेप से शुरू होता है। और सच में लाइफ में ना हर बड़ा चेंज भी ऐसे ही आता है। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि जब परफेक्ट टाइम मिलेगा तब स्टार्ट करूंगा, थोड़ा और रेडी हो जाऊं, थोड़ा और प्रिपेयर हो जाऊं, फिर इसको स्टार्ट करूंगा। लेकिन परफेक्ट टाइम का वेट करते करते ना स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो अगर आपको जिम स्टार्ट करना है, कोई कोर्स करना है, अपना बिजनेस शुरू करना है, किसी से बात करके अपना रिश्ता ठीक करना है, तो पूरी जर्नी का प्रेशर एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। बस एक स्टेप लीजिए, हो सकता है वही छोटा सा स्टेप कुछ महीनों बाद आपको वहाँ खड़ा कर दे जहाँ आज आप सिर्फ पहुँचने का सपना देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना याद रखिए कि स्टार्ट स्मॉल बट एट लीस्ट स्टार्ट। और इसी थॉट के साथ द हैप्पी आवर्स को करते हैं शट डाउन। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे 89.6 रेडियो महारानी। कल फिर मिलूंगी इसी वक्त, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी।
1: What's up, dog?
2: Shit, brother, shooting in the wind. What's good with it?
1: Watch out, man. Watch out, Dell G coming, man.
2: Oh, word. They say he the GOAT. He all the way tapped in.
1: Yeah, dog. He killing the game.
2: Oh, Dell G, watch out.
3: Damn.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: ਕਹਿੰਦੀ
1: ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ
2: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਹਸੀਨ ਹੋ एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
3: है तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
2: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है और इसके साथ साथ लोगों की तबीयत भी खराब चल रही है। लोगों में मैं भी आता हूँ। मैं कौन हूँ?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: आज गौरव इन द हाउस, आप सभी का स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 पर। अब देखो 5:05 हो रहे भाई, बट अब यहाँ से 9 तक मैं आप लोगों के साथ यूं ही बैठा रहूंगा। हम लोग करने वाले हैं खूब सारी बातें, मस्ती होने वाली है बहुत सारी, और इसके साथ साथ मार्केट में पता क्या हो रहा है, मार्केट में लोग बीमार हो रहे हैं, या फिर उसके अलावा काफ़ी बार ऐसा भी हो रहा है कि नकली मिठाई मिल रही है नकली मिठाई के अलावा नकली चीज़ें भी मिल रही है, खाने में मिलावट है, पानी पीने में मिलावट है। पानी में तो खैर मिलावट नहीं होती, बट स्टिल कहने की बात है, बहुत सारे जूसेस आते हैं जिसमें मिलावट है शुगर की। और इसके अलावा ऑनलाइन ठगी हो रही है, इस बार तो नए तरीके का स्कैम हुआ है, और इसको स्कैम कह भी सकते हैं या नहीं ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि एक क्रिएटर ने 8.5 से 40 करोड़ रुपए कमा लिए हैं ऐसा लोग कह रहे हैं। अब कितने कमाए एग्जैक्टली वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये तो है जी ऑल टोटल। और आज पता क्या हुआ, आज सुबह सुबह बादल आए, फिर उसके बाद धूप आ गई, फिर उसके बाद फिर से बादल आए, फिर धूप आ गई, और कल जो शाम को बारिश हुई थी, और मैं स्टूडियो से जब निकला था ना उसके बाद मैंने घर जाके एक चीज़ नोटिस करी, और वो ये थी कि वहाँ पर इतने ज़्यादा पानी भरा हुआ था, वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो वाटर लॉगिंग जो है ना वो इसलिए क्योंकि पानी निकासी नहीं हो पाती, और निकासी क्यों नहीं हो पाती, जो पानी की निकासी के लिए जो टनल्स बने, सीवरेज बने हैं वो सब तो बने हैं, बट वहाँ पर पन्नियाँ अटक जाती है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि खुले में कूड़ा फेंकना बंद कर दीजिए, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजने वाले हैं, उन्हीं में से ये गाना आप सभी के लिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

फेस्टिव सीजन इज ऑन और कल और परसों, बस परसों है रक्षाबंधन। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव आप सभी के साथ एचआर 896 सुन रहे हैं आप। एंड मेरा नाम है आरजे गौरव, बता दिया तो ऑलरेडी। बट फेस्टिव सीजन है और रक्षाबंधन परसों है और कुछ लोग कह रहे हैं कि कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो मुहूर्त है, मुहूर्त का टाइमिंग कल सुबह से है, परसों सुबह तक रहेगा। बट कुछ और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं परसों ही होगा, तो उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। बट फेस्टिव सीजन आता है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है, जैसे कि मिठाइयों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और मिठाई के साथ साथ चीनी की डिमांड भी बढ़ गई है। और चीनी कहाँ तक पहुँच गई है आप सभी जानते हैं। खैर, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये है कि नकली मिठाई मिल रही है मार्केट में, तो सोच समझ कर मिठाई खरीदिएगा। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दो पुलिस ऑफिसर्स वो एक मिठाई की दुकान पर जाते हैं और उनके साथ और भी बहुत बड़ी टीम थी, तो पुलिस ऑफिसर्स ने बोला देखो ये मिठाई आपने हमारे हाथ पे दी है, इसे खा के दिखाइए। तो उन दोनों ने खाने से ही मना कर दिया, मतलब जो दुकानदार था, जो दुकान का ओनर था और जो इवन हलवाई था, उन्होंने उस मिठाई को खाने से ही मना कर दिया। एक ने बोल दिया जी मुझे तो डायबिटीज़ है, दूसरे ने बोल दिया नहीं मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो जो इंसान अपने ही घर की मिठाई खाने से मना कर रहा है तो क्या वो मतलब दूसरों को क्यों बेच रहा है? मतलब खुद की बनाई हुई मिठाई क्या तुम्हें लगता है कि इतनी साफ होगी कि वो खुद ही नहीं खा रहा? मतलब समझ रहे हो ना सरकाजम मैं बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को मिठाई कहाँ से लेनी है ये चीज़ आप लोग सोच समझ के लीजिए। फरीदाबाद में बहुत सारी एन नंबर्स ऑफ दुकान है जहाँ पर आपको ट्रस्ट है, जिन पर आपको ट्रस्ट हो सकता है। बट हाँ, इसी के साथ साथ अंधा ट्रस्ट मत कीजिएगा, मीन्स ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा। और अगर आपको मिठाई इतनी ही ज़्यादा पसंद है तो हो सके तो घर पर बना लीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन है और मेरी एक बहन है वो मेरे लिए हर साल खीर बना के लाती है और सेवियाँ बना के लाती, दैट इज़ अमेजिंग। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि घर पर ही कुछ अच्छा सा बनाइए और अभी फ़िलहाल रेडियो महारानी को एन्जॉय करते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए एक ऐसा गाना चला रहा हूँ जो आपको बचपन की याद तो

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। दिल में मेरे आज क्या है, दिल में मेरे ये है कि फरीदाबाद में चोरी फिर से बढ़ गई है गाड़ी तोड़कर। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है 89.6 रेडियो महारानी पर। शो का नाम है एचआर 896 एंड देखो बहुत देर से बातें कर रहे थे और जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोली ना कि कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, फरीदाबाद में गाड़ी के शीशे तोड़कर चोरी फिर से बढ़ गई है। आपको याद होगा आज से करीब करीब 1.5 साल पहले 2 साल पहले सेक्टर 24 में भी काफ़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे। फैक्ट्री के बाहर गाड़ियां खड़ी थी, उनके अंदर देखा जाता है कि गाड़ी के अंदर क्या सामान पड़ा हुआ है, फिर गाड़ी का शीशा तोड़ के अंदर से सामान चुरा लिया जाता है। तो ये चीज़ फिर से देखने को मिल रही है फरीदाबाद में। आज सारे अखबार में ये खबर थी एंड इसी के साथ साथ मैं बस आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग बैंक जा रहे हैं ना और बैंक से कैश निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैश अगर निकाल रहे हैं तो गाड़ी में कैश रख के बिल्कुल भी मत जाइएगा, चाहे कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़, लैपटॉप है, बैग है और वो सब चीज़ें, तो काफ़ी बार ऐसा होता है हमारे बैग में कुछ नहीं होता बट हम लोग गाड़ी में रख देते हैं। तो बाहर से जो देख रहा है, जो चोर है, उसको तो नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि बैग के अंदर कुछ नहीं है, वो शीशा तोड़ देगा, नुकसान तो हो जाएगा ना शीशे का। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, देखो आप लोग कोशिश कीजिए कि गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ भी सामान मत रखिए जिससे कि वो चोर प्रेरित हो जाए कि आपकी गाड़ी का शीशा वो तोड़ दें। और इसी के साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि अपने घर के आसपास सीसीटीवी कैमरा भी लगाएं और गाड़ी कहीं पर भी खड़ी करते हैं वहाँ पर इंश्योर कीजिए कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये कहना।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

आमद सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

गल गल सुन दिल भर जानी झूठी रानी, गाने का नाम था गल सुन और पड़ोसी मुल्क का ये गाना है और इसी के साथ साथ वायरल भी हो रहा है, नहीं वायरल फीवर हो रहा है ये मैं कहना चाहता हूँ। वायरल फीवर किसको हो रहा है, मुझे भी हो गया है एंड ऑफिस में पहले से ही किसी और को था उनके थ्रू और शायद मुझे हो चुका है एंड मैं सभी से बोलना चाहूँगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, क्योंकि मार्केट में अगर डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर आप लोग देखोगे तो आज की डेट में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी। हम सभी के एक फैमिली डॉक्टर्स होते हैं हम लोग, जिनके पास जाते हैं हमेशा हल्के से भी बुखार होता है उन्हीं के पास जाते हैं, तो आप एक बार उनसे कंसल्ट कीजिए कि इस मौसम में आप कैसे बचे रह सकते हैं। सबसे पहली चीज, वायरल फीवर भी फैल रहा है, डेंगू भी फैल रहा है और इसके साथ साथ अब तो स्वाइन फ्लू भी फैल रहा है और तीनों के लक्षण ऑलमोस्ट सेम है, ठंड लगेगी, सिरदर्द होगा, बॉडी पेन होगा और इसके साथ साथ बुखार भी तेज होगा। डेंगू में थोड़ा सा एक्सट्रीम केस होता है कि डेंगू में बुखार 102 103 डिग्री तक पहुंच जाता है, बट यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज प्लीज प्लीज अपना जितना हो सके उतना ख्याल रखिए। मौसम फिर से बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, बारिशें हो नहीं रही है, जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन मौसम ठंडा हो जा रहा है, अगले दिन फिर से उमस हो जा रही है, तो इसकी वजह से वायरल फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। हो सके तो मास्क का उपयोग कीजिए, फिर से याद कीजिए 2020 वाले वो दिन, 2021 वाले वो दिन जब हम लोग मास्क लगा कर घूमा करते थे, तो मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचिए, पानी पीते रहिए, गर्म पानी पीजिए। देखो गर्म पानी ना मतलब गला साफ रखने के लिए पीना पड़ेगा आपको, अभी भी मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, बट पॉइंट यही है कि गर्म पानी पीने से आपके गले में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, मतलब बलगम नहीं जमेगा और इसके साथ साथ अगर हल्का सा भी बुखार महसूस होता है तो खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर के पास ही हमें जाना है और खुद से दवाई नहीं लेनी है, बस इतना सही मैं कहना चाहूँगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए खूब सारे गाने चलाऊँगा, उनमें से ये गाना जो शायद आपको बहुत कुछ याद दिला देगा।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओ

0: एक क्रिएटर आया था इंस्टाग्राम पे, उसने बोला था 25 अगस्त को एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और सोचो उस अच्छी चीज को बताने के लिए उसने 500 रुपए मांगे लोगों से और लोगों ने 500 रुपए दे भी दिए। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ रेडियो का गौरव आप सभी के साथ, एंड जो मैं बात बोल रहा हूँ ये कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा स्कैम, लोगों ने 40 करोड़ रुपए तक गवा दिए। एक क्रिएटर आया जिसने अपनी प्रोफाइल का नाम लिखा 25 अगस्त 2026। 20 अगस्त को ये प्रोफाइल बनी थी और उसने आगे वीडियो डाली कि 25 अगस्त रात ठीक 12 बजे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डालने वाला हूँ और आप लोग प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। फिर उसने ऐसे डाला, 4 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा, 12 घंटे बचे हैं, 6 घंटे बचे हैं और 1 घंटा बचा है, ऐसे करके उसने डाला। और जैसे ही ठीक 12 बजे उसने अपना टेलीग्राम का एक लिंक भेजा। टेलीग्राम आप सबको पता है टेलीग्राम ऐप है, तो उसका एक लिंक भेजा उसने कि इसको ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही टेलीग्राम खोला लोगों ने तो उसमें देखा कि वीडियो देखने के लिए तो पैसे लग रहे हैं। कितने रुपए लग रहे हैं? 500 रुपए लग रहे हैं। और बता दूं आपको, इस लड़के के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हो गए थे करीब करीब 4 लाख और उनमें से करीब करीब 1.5 लाख लोग 500 रुपए देकर उस वीडियो को देखने के लिए चले गए। और पता है वीडियो में क्या था? वीडियो में ये था, अपना टाइम मत वेस्ट करो। सोचिए 500 रुपए लिए इसने लोगों से और 1,60,000 लोगों से 500 रुपए लिए, तो करीब करीब कितने रुपए बनते हैं समझ लीजिए, 8 करोड़ से भी ज्यादा रुपए बनते हैं। हैट्स ऑफ है ऐसी सोच को। और ये स्कैम है भी या नहीं है, लोग इस पर दिमाग लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई इस बंदे ने क्या किया। और पता है आपको, अनट्रेसेबल। अनट्रेसेबल कैसे? कि टेलीग्राम को ही पैसा गया है पब्लिक का, अब वो टेलीग्राम इसको खुद से पे करेगा। तो अब इस इंसान ने क्या किया, कौन है ये इंसान, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, नो डाउट इसने पैसे बहुत कमा लिया है, शायद कहीं ना कहीं नज़र में तो आ ही जाएगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए और आप लोग कोई ऐसी चीज़ें मत करना बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू इजी मनी। ठीक है, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।
1: लपड़े हजार खून सर पे सवार चढ़ा नाम पे इनाम लौंडे घर से फरार। लपड़े हजार खून सर पे सवार चढ़ा नाम पे इनाम लौंडे घर से।

0: बार।
1: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
2: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
3: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
4: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आपने कभी सपने में देखा है कि आप लोगों ने एक नया बिजनेस चालू करा है और वो बूम भी कर रहा है? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। ऐसा पता क्या होता है, सपने के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ रेडियो का गौरव, आप सभी के साथ। एंड जो मैं बात बोल रहा हूँ, सपने में बिजनेस देखना या फिर बिजनेस का आइडिया देखना, तो इसके पीछे एक बहुत ही पॉजिटिव साइन छुपा हुआ है। एक्चुअली में आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है ना, वो दिमाग में रियल ग्रोथ, रियल लाइफ ग्रोथ में लगा पड़ा है, और इसके साथ साथ पैसे और करियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो आप, और साथ ही साथ क्रिएटिविटी। जब आप सो रहे होते हो तो आपका दिमाग पुरानी यादें और नए जो आइडियाज़ होते हैं ना, उनको मिलाकर नए सॉल्यूशंस बनाता है। तो सोचो, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और हो सकता है आपके मन में काफ़ी बार सपने में आया हो कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो बूम भी कर रहा है, और हो सकता है इसके पीछे कोई हिडन डिज़ायर भी हो आपकी। हो सकता है आपके अंदर काम करने के बजाय खुद का कुछ शुरू करना की चाहत हो, तो ये सही वक्त है कि आप कुछ ना कुछ शुरू कर दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप सपने में कभी भी देखते कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हो सकता है आपको रियल लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ ये एक इशारा है कामयाबी की तरफ का, मतलब आपको बहुत ही जल्दी, आप जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, देखो जैसे ही आपको जो सपना आता है ना, वो उठते ही आप तुरंत नोट डाउन कर लो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है सपने में जो चीज़ें दिखती है ना, हम उन्हें भूल जाते हैं। आपको पता है लैरी नाम का एक इंसान था जिसने गूगल बनाया, उसको सपने में आया ये आइडिया, और उसने उठते ही उस आइडिया को पेन डाउन कर लिया था, और आज गूगल कहाँ पर है ये तो हम सभी जानते हैं। और इसी के साथ साथ आप रियलिटी चेक भी करें कि क्या उस आइडिया पर काम किया जा सकता है और उसका मार्केट कैसा है। छोटी सी शुरुआत करो और थोड़ा रिसर्च करो, और उसके बाद काम शुरू कर दो। हो सकता है आपका दिन और आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी जाने वाली है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। था सपने का डीकोड आप सभी के लिए, गाना चला रहा हूँ रेडियो महारानी 9.6 पर।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन
2: ना

0: एक थोड़ी सी ना निराशाजनक बात है हम सब के लिए, जितने भी स्पोर्ट्स लवर है उन लोगों के लिए तो खास कर ये निराशाजनक खबर है।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव आप सभी के साथ है। रेडियो महारानी 89.6 पर HR 896 शो का नाम चल रहा है। एंड देखो, मेंस क्रिकेट टीम और मेंस हॉकी टीम और इसी के साथ साथ वुमेन्स हॉकी टीम, आपको पता है क्या, ये दोनों की दोनों अब हॉकी टीम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेंस हॉकी टीम और वुमेन्स हॉकी टीम। तो मेंस हॉकी टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पाकिस्तान को हराया था इंडियन टीम ने, और अपने आखिरी दो मैचेस में नीदरलैंड से 1-3 से हारे और फिर उसके बाद अर्जेंटीना से 3-5 से हारने के बाद इंडियन मेंस टीम हॉकी टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। और अब आने वाले मैच भी हैं, मतलब बेल्जियम के खिलाफ 7th या 8th प्लेस के लिए मैच होगा। बट इसके अलावा अगर वुमेन्स टीम की बात करें तो पूल ई के क्रॉसओवर मैचेस के बाद उनका सफर भी सेमीफाइनल से पहले रुक गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया आखिरी डू ऑर डाई मैच था और वो 0-0 से ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉ हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, गोल स्कोर्ड मैट्रिक कम होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में चला गया और इंडिया बाहर हो गया। बट यहाँ पर हम लोग हार नहीं मानेंगे। तो टीम इंडिया हॉकी टीम, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, मैं वुमेन्स की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा अपना फुल ऑन देते हैं। हालांकि अभी ये उनके एक प्रदर्शन बेहतरीन रहा था, क्योंकि देखो ड्रॉ हुआ है मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ और बस उनके गोल्स थोड़े से पहले मैचेस में ज़्यादा थे, इस वजह से वो सेमीफाइनल में गए, नहीं तो कोई चांस नहीं था। खैर, अगली बार के लिए ऑल द बेस्ट बोलेंगे और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए खूब सारे गाने चलेंगे उन्हीं में से बूम शाकलाका। चलिए सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

सुपरस्टार यश की टॉक्सिक आज रिलीज हो चुकी है और सब लोगों के मन में एक सवाल था कि वेंसडे को क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि आमतौर पर हम लोगों ने देखा है कि फिल्में तो रिलीज होती है फ्राइडे को। हाँ, काफी बार ऐसा भी होता है कि थर्सडे को भी रिलीज हो जाती है। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। रेडियो महारानी 89.6 पर एचआर 896 सुन रहे हैं आप। एंड टॉक्सिक की बात करें तो टॉक्सिक एक्चुअली में वेंसडे को इसलिए रिलीज करी जा रही है क्योंकि सबको पता है फ्राइडे को रक्षाबंधन है एंड लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है और इसके वजह से ही थोड़ा सा ना स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, मतलब लोगों को देखने का टाइम मिल जाएगा लोगों के पास। और थर्सडे नाइट को अगर कुछ भी नहीं होगा करने के लिए तो थर्सडे नाइट को टॉक्सिक देखने चले जाएंगे लोग। मगर इसी के साथ साथ टॉक्सिक की टीम ने थिएटर्स को एक वार्निंग जारी करी है। वार्निंग में ये बोला है कि जो स्क्रीनिंग डॉल्बी फेडर होता है ना उसका लेवल 5 से नीचे मत करना। अब 5 से नीचे क्यों नहीं करना उन्होंने बोला है, क्योंकि डायलॉग अगर 5 से नीचे फेडर को कर दोगे ना तो डायलॉग नहीं सुनाई देंगे और हो सकता है कि दिक्कत भी हो जाए, हो सकता है कि जो पब्लिक है उन लोगों को ढंग से सुनाई ना दे। और फिर उसके बाद बोला कि अगर थिएटर मैनेजर को लगे कि हॉल के लिए आवाज़ कम है तो फेडर को और भी ऊपर बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे बर्बाद फिल्मों में से एक 3 घंटे का टॉक्सिक टॉर्चर ऐसा लोग कह रहे हैं बट मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं खुद से नहीं देख लूंगा। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए और अगर आप लोग प्लान बना चुके हैं टॉक्सिक देखने का तो बिल्कुल गो अहेड और बताइएगा जरूर, अपना अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। नहीं तो रिव्यू देने के लिए तो हमारे साथ आरजे गीत है ही, आप सभी को बताया हर वीकेंड रिव्यू जरूर देती है। तो अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बज रहे हैं, उन्हीं में से ये गाना 89.6 पर।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

आपको पता है अब आपको अपने मोबाइल फोन का बिल या फिर बिजली का बिल या फिर EMI इन सब के लिए बार बार पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी UPI से। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। UPI ऑटो पे अभी क्या क्या कर सकता है, देखो इसमें आप क्रेडिट कार्ड का बिल है वो भी ऑटोमेटिकली पे कर सकते हो, आपको बार बार पेमेंट के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपको बार बार ऑथेंटिकेशन नहीं करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को नहीं करना पड़ेगा। और ये सेफ भी है, सेफ ऐसे है कि जैसे मान लेते हैं आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है कि ऑटोमेटिकली मान लेते हैं वो आ गया 20,000 रुपये, जस्ट इमेजिन 20,000 रुपये आ गया, तो वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएंगे अगर आप उसको ऑटो पे पर रखते हो। मोबाइल फ़ोन का बिल 500 रुपये आया तो आपने उसको भर दिया, यूटिलिटी बिल है, OTT या फिर कोई सब्सक्रिप्शन है उसका भी खुद से पैसा कट जाएगा, SIP है वो भी कट जाएगी, और EMI या फिर लोन की पेमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली कट जाएगी, और हो सकता है आपने कोई बीमा ले रखा हो तो उसका प्रीमियम भी ऑटोमेटिकली कट जाएगा अगर आप ऑटो पे पर सेटअप करते हैं तो। ऑल्दो ये फीचर बहुत टाइम से था बट अब ऑलमोस्ट हर ऐप पर ये आ चुका है। अब आपको लगेगा कि देखो ये तो हमारे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, आप ऑटो पे पर रखिए उसको, बट इसमें मैक्सिमम पेमेंट 1,00,000 तक ही जाएगी, तो 1,00,000 से ऊपर की पेमेंट नहीं हो पाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। और ये उन लोगों के लिए जो बार बार अपना बिल भरना भूल जाते हैं या फिर SIP भरना भूल जाते हैं या फिर बीमा का जो प्रीमियम है वो भरना भूल जाते हैं, तो आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, ये हर समय पर हर बार अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये तो है जी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें जो मैंने आप सभी को बता दी, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाने चला रहा हूँ। वापस अगर बात करते हैं इस मौसम विभाग के बारे में, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि देखो बारिश वारिश अब कुछ नहीं होने वाली, करेंगे इसके बारे में बात।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो
3: ladies and gentlemen, you are not

0: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवरडोज,
1: तो HRA 96 पर आ जाता है
2: रेडियो का गौरव
0: RJ गौरव।
3: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ,
4: सुन भाई सुरेंद्र।
5: हाँ भाई सुरेंद्र।
4: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
5: सही कह रहा है सुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

आप लोगों को याद तो होगा कि पिछले हफ्ते एक पूरे हफ्ते बारिश दिखाई थी, बट हुई एक भी दिन नहीं थी। फ्राइडे की नाइट में बारिश हुई थी और वो भी सैटरडे की सुबह तक चली थी। मगर इस हफ्ते बारिश दिखाई ही नहीं थी, बट इस बार आप सभी को पता है ट्यूसडे की शाम को बारिश हुई है, मंडे की भी दिन बारिश हुई थी। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है, रेडियो महारानी 89.6 पर। और इस टाइम ऑलमोस्ट हम लोग बात करते हैं वेदर की, क्योंकि मौसम विभाग कुछ अलग ही बताता है और होता कुछ और ही है। बचपन में भी ऐसे हम लोग सुनते थे ना कि टीवी पर दिखा रहे हैं कि कल बारिश होगी तो मतलब बारिश नहीं होगी। खैर अभी बता दूं आप लोगों को कि अगला पूरा 3 से 4 दिन यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कोई बारिश की चांसेस नहीं है। 10% 20% 10% 20%। और इसके साथ साथ अभी ना मौसम बदल रहा है और आने वाले कुछ दिन में भी ऐसा ही रहेगा। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो 45 से 75% तक की ह्यूमिडिटी दिखाई दे रही है। हवा चल रही है तो फिर ह्यूमिडिटी कम हो रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो हवा बंद हो जा रही है। और इसके साथ साथ एयर क्वालिटी अभी सेटिस्फैक्ट्री जोन में चल रही है। एयर क्वालिटी तो अच्छी रहे तो बस यही हम लोगों की दुआ रहेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी आने वाली सर्दियों में फॉग के साथ स्मॉग भी बढ़ जाएगा। एंड एक और चीज़ मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, मंडे की शाम को आप लोगों ने वो कोहरा देखा था? मतलब वो हर जगह कोहरा कोहरा सा लग गया था बारिश के बाद। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा था, मैंने रिकॉर्ड भी कर रखा है। जिसको वीडियो चाहिए मुझसे मांग लो, इंस्टाग्राम पर आइए, मिलते हैं। और इसी के साथ साथ मौसम विभाग के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। नहीं, मौसम विभाग के बारे में नहीं, मौसम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बारिश अब तो नहीं होने वाली ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। बट हम लोगों को पता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। जब बारिश नहीं लिखी होती तभी ही बारिश हो जाती है। खैर मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि सबका राखी रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से जाए, और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि खूब सारे गाने आप सभी के लिए बजने वाले हैं। उन्हीं में से ये गाना उपाय मित्र।

के अंदर फैशन आईकॉन स्वैग ऑन फ्लीक, बॉलीवुड वालों को स्वैग सिखा दू, ब्रांड जो पहनू उसकी सेल बढ़ा दू, मेरे बारे तुझे दुनिया बताएगी, खेलना तू चाहती है तो खेल खिला दू।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट वॉट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो।

पता नहीं क्यों बट ये गाना ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और पूरी एनर्जी भर देता है अंदर तक। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ कौन, रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। गर्मियों में कभी भी कोल्ड हुआ है आप लोगों को? मैं कह रहा हूँ कोई और बीमारी हो जाए बट ये कोल्ड नहीं होना चाहिए गर्मी के दिनों में, क्योंकि क्या होता है ठंडी लगने लग जाती है, ठंडा पानी नहीं पी सकते आप लोग, गर्म पानी पीना पड़ेगा गर्मी के दिनों में। और वक्त हो चुका है क्या हाल है का भाई, जून जुलाई अगस्त की गर्मी हो और सर्दी हो जाए तो फिर बॉडी को भी वेदर फोरकास्ट समझ नहीं आता। और अगर हम लोग किसी से पूछे क्या हाल है, वो बोलेगा बाहर 45 डिग्री है और अंदर से मैं कंबल ओढ़ रहा हूँ, क्योंकि मौसम जब बदलता है तो तबीयत भी बिगड़ती है और गर्मी के दिनों में भी कभी कभार कंबल ओढ़ना पड़ जाता है। किसी से पूछो क्या हाल है, वो बोलेगा एसी चलाया गर्मी के लिए था, अब नाक चल रही है सर्दी के लिए, क्योंकि जब कोल्ड होता है तो वैसा ही होता है। एंड इसके साथ साथ गर्मी में कोल्ड हो गया हो तो लोग मुझे देख के नहीं, मेरी इम्यूनिटी को देख के जज करते हैं। और ऐसा भी होता है यार, काफ़ी बार जब गर्मियों में कोल्ड हो जाता है ना तो बाहर लोग ORS पी रहे होते हैं और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अदरक वाली चाय पी रहे होते हैं, क्योंकि गर्मी में अदरक वाली चाय कितनी गर्मी देती है सबको पता है, बट कोल्ड हो जाए तो क्या कर सकते हैं, अदरक वाली चाय ही पीनी पड़ती है। 45 डिग्री में नाक बंद है, बॉडी ने क्लाइमेट चेंज को पर्सनली ले लिया मुझे ऐसा लगता है। एंड किसी से पूछ लो क्या हाल है, अगर उसको कोल्ड हुआ होगा ना वो यही बोलेगा कि गर्मी में कोल्ड हो गया है, अब एसी से दोस्ती भी है और दुश्मनी भी, क्योंकि एसी चलाओ तो ठंड लगती है, नहीं चलाओ तो गर्मी लगती है। तो क्या करे इंसान, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, अभी कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM और आप सभी के लिए ये गाना दिल्ली से।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: ये गाना तो बहुत अच्छा था, मगर मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कि आप लोगों ने वो वाला गाना सुना है दिलजीत दोसांझ की आवाज में जो गाना है, लैम्बोर्गिनी तक कितने लौंदा फिरे गेड़िया, लैम्बोर्गिनी ही है वो। एक्चुअली पंजाबी भी जैसा हो जाता है, मेरी पंजाबी भी खराब है यार, मैं क्यों बोलूँ, चलो मैं हिंदी में बात करता हूँ। लैम्बोर्गिनी को लैम्बोर्गिनी बना देते हैं और वो ह्यूमरसली बोला जाता है। तो ये वीडियो भी इसी तरह से थी, जिसमें एक लड़की को दिखाया जो कि जेलस है, इनसिक्योर है, और वो अपने हस्बैंड के ओवर फ्लर्टी बिहेवियर की वजह से परेशान है और उसको लगता है उसके ना बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड है। बट लास्ट में क्या होता है, लास्ट में उसके सारे के सारे दोस्त लड़के निकलते हैं जिनका नंबर उसने लड़की के नाम से सेव कर रखा होता है, जैसे दिलजीत का नंबर दिल के नाम से सेव कर रखा होता है। तो इस गाने की पूरी वीडियो तो अलग है, बट इस गाने में एक लाइन है, पिंजिया जंदा है जीवे रू, इसका मतलब क्या है, जैसे रूई को पहले वो करते थे ना, फेंटने वाले आते थे रूई को घर पे आके, रूई के गद्दे को पूरी रूई निकालते थे बाहर, फिर उसके बाद उसे फेंटते थे और उसको पिंजना कहते हैं। और ऐसा ही सेम टू सेम इसमें भावे चन्न तो सुन रखा तेरा मुँह, मतलब कि इनोसेंट फेस है कंपेयरिंग इट टू मून, इसमें यही है कि हस्बैंड हैंडसम है और उसका चेहरा चांद की तरह है, पर दिल तो काला ही है वह दिल तेरा काला मुंडे, यहाँ सुना है ना ये गाना। तो चलिए इस गाने से तो हो गया डिकोड, बट अभी मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे गाने की जिसका नाम है गिल्टी, करण औजला और इंद्र चौहान की आवाज़ में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।
1: करण औजला, इंद्र चौहान, प्रूफ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन
2: पाका छोड़ दूं किसे चीज की ग्रीड को ना।

अंदर गहरे कानेड़े डीप कोने मेरे कमरे मड़ंगा एड़ंगा क्लीन एंड नीट कोने मैंने रात ने सुननी बीटे मेरे तो लीड कोने I'm G.O.D. आना कदे मेरा पीक कोने स्प्लेंडर पे बैठ जा गोरी मेरे तो जीप कोने

0: चाहिए। रोडवेज आगे रोहतक की मने लोकल चाहिए, नीम प्रॉपर चाहिए, पर्पल चाहिए, हर्पल चाहिए।
1: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवरडोज,

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि जैसा हमारे को पिक्चरों में मूवीज़ में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस्ड इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है। वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज़ में मन नहीं रखता। वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको। और ज़्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हम पॉजिटिवली कैसे सोच पाएंगे? हमारे को

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। दिल में मेरे आज क्या है, दिल में मेरे ये है कि फरीदाबाद में चोरी फिर से बढ़ गई है गाड़ी तोड़कर। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है 89.6 रेडियो महारानी पर। शो का नाम है HR 896। एंड देखो, बहुत देर से बातें कर रहे थे और जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोली ना कि कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, फरीदाबाद में गाड़ी के शीशे तोड़कर चोरी फिर से बढ़ गई है। आपको याद होगा आज से करीब करीब 1.5 साल पहले 2 साल पहले सेक्टर 24 में भी काफ़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे। फैक्ट्री के बाहर गाड़ियां खड़ी थी, उनके अंदर देखा जाता है कि गाड़ी के अंदर क्या सामान पड़ा हुआ है, फिर गाड़ी का शीशा तोड़ के अंदर से सामान चुरा लिया जाता है। तो ये चीज़ फिर से देखने को मिल रही है फरीदाबाद में। आज सारे अखबार में ये खबर थी। एंड इसी के साथ साथ मैं बस आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग बैंक जा रहे हैं ना और बैंक से कैश निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैश अगर निकाल रहे हैं तो गाड़ी में कैश रख के बिल्कुल भी मत जाइएगा, चाहे कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़, लैपटॉप है, बैग है और वो सब चीज़ें, तो काफ़ी बार ऐसा होता है हमारे बैग में कुछ नहीं होता बट हम लोग गाड़ी में रख देते हैं, तो बाहर से जो देख रहा है, जो चोर है, उसको तो नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि बैग के अंदर कुछ नहीं है, वो शीशा तोड़ देगा, नुकसान तो हो जाएगा ना शीशे का। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, देखो आप लोग कोशिश कीजिए कि गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ भी सामान मत रखिए जिससे कि वो चोर प्रेरित हो जाए कि आपकी गाड़ी का शीशा वो तोड़ दें। और इसी के साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि अपने घर के आसपास CCTV कैमरा भी लगाएं, और गाड़ी कहीं पर भी खड़ी करते हैं वहाँ पर इंश्योर कीजिए कि वहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: क्या आपने कभी सपने में देखा है कि आप लोगों ने एक नया बिजनेस चालू करा है और वो बूम भी कर रहा है?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: ऐसा पता क्या होता है, सपने के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ रेडियो का गौरव आप सभी के साथ। एंड जो मैं बात बोल रहा हूँ, सपने में बिजनेस देखना या फिर बिजनेस का आइडिया देखना, तो इसके पीछे एक बहुत ही पॉजिटिव साइन छुपा हुआ है। एक्चुअली में आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है ना, वो दिमाग में रियल ग्रोथ, रियल लाइफ ग्रोथ में लगा पड़ा है। और इसके साथ साथ पैसे और करियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो आप, और साथ ही साथ क्रिएटिविटी। जब आप सो रहे होते हो तो आपका दिमाग पुरानी यादें और नए जो आइडियाज़ होते हैं ना, उनको मिलाकर नए सॉल्यूशंस बनाता है। तो सोचो, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है और हो सकता है आपके मन में काफ़ी बार सपने में आया हो कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो बूम भी कर रहा है। और हो सकता है इसके पीछे कोई हिडन डिज़ायर भी हो आपकी, हो सकता है आपके अंदर काम करने के बजाय खुद का कुछ शुरू करना की चाहत हो, तो ये सही वक्त है कि आप कुछ ना कुछ शुरू कर दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप सपने में कभी भी देखते कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हो सकता है आपको रियल लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ ये एक इशारा है कामयाबी की तरफ का, मतलब आपको बहुत ही जल्दी आप जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, देखो जैसे ही आपको जो सपना आता है ना, वो उठते ही आप तुरंत नोट डाउन कर लो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है सपने में जो चीज़ें दिखती है ना, हम उन्हें भूल जाते हैं। आपको पता है लैरी नाम का एक

काम किया जा सकता है और उसका मार्केट कैसा है। छोटी सी शुरुआत करो और थोड़ा रिसर्च करो और उसके बाद काम शुरू कर दो। हो सकता है आपका दिन और आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी जाने वाली है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। था सपने का डी कोड आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ रेडियो महारानी 9.3।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

या तो एक दिन जिम चले जाओ या फिर लगातार रोज रोज जिम जाओ। एक दिन जिम जाने से मेरा मतलब यह है कि एक ही दिन जाके बहुत सारी एक्सरसाइज कर आओ, वो गलत है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव आप सभी का स्वागत करता है। इस टाइम बन चुका हूं मैं जिम ब्रो, और इस टाइम हम लोग हमेशा जिम के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं कि कुछ फिटनेस के बारे में बात की जाए। तो पता है क्या होता है, काफी बार ऐसा होता है इंसान मोटिवेटेड फील करता है और फिर वो सोचता है चलो वर्कआउट करने चलते हैं। हो सकता है वो जिम जाएगा, हो सकता है वो रनिंग करने चले जाए, बट मेक श्योर कि आप जो आज जिम जा रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि ये आज आखिरी दिन नहीं है, आज ये पहला दिन है और फिर उसके बाद आप रेगुलरली जाओगे। तो एक ही दिन जाके अपने आप को एग्जर्ट नहीं करना है अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए। वो लोग कहते हैं ना पुश योर लिमिट्स, पुश पास्ट योर लिमिट्स, बट हाँ लिमिट्स भी एक हद तक ही पुश कीजिए। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप लोग सोचते हो कि देखो मैंने 20 किलो उठा लिया, चलो मैं 25 भी उठा लूँगा, 30 भी उठा लूँगा, 35 भी उठा लूँगा, 40 भी उठा लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवरलोड कीजिए चीज़ों को। आप 5 उठाइए, 10 उठाइए, फिर उसके बाद 12.5, 15, 17, 20, ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर बढ़िए। एक बार में नहीं बढ़ना है आगे। और ये खासकर उन लोगों के लिए जो कि अभी अभी नए नए जिम जा रहे हैं, क्योंकि जो ये नया खून होता है ना, जो ये टीनेजर्स हैं, इन लोगों के अंदर बड़ा ये रहता है कि हम तो जिम जा रहे हैं, हम तो इतना वेट उठाएंगे, हैवी उठाएंगे, हैवी उठाएंगे। नहीं, आप लोगों को हैवी नहीं उठाना है। हैवी तो गधा भी उठा लेता, मगर स्मार्ट कौन होता, घोड़ा। तो देखो आप लोगों ने घोड़ा बनना है, आप लोगों ने लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होगी। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते जाइए, क्योंकि मैं चला रहा हूँ आप लोगों के लिए खूब सारे गाने।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: फेस्टिव सीजन इज हियर, परसों है रक्षाबंधन, और सभी भाइयों से मेरा सवाल है कि आप लोगों की जेब कितनी ज्यादा खाली होने वाली है, क्योंकि मेरी तो अच्छी तरीके से खाली होने वाली है।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव इन द हाउस, आप सभी का स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 पर। शो का नाम है 4896 एंड एक बात बोलना चाहूंगा, देखो मंथ एंड है, वैसे ही पैसे नहीं होते, रक्षाबंधन और है फिर भी पैसे नहीं होंगे खैर मैं तो अपनी बहन के लिए पैसे पहले से निकाल के अलग रख दिए थे मैंने, शगुन होता है वो, वैसे तो प्यार रहता है अपना, मैं नहीं भी दूंगा तो क्या होगा, दो तीन थप्पड़ ही मार देगी मेरी बहन, ज़्यादा ज़्यादा उससे ज़्यादा ना कुछ नहीं होने वाला। खैर थप्पड़ से ज़्यादा ना पता क्या छुपता है, ताने, मैंने तो चाहिए दिया तेरे बर्थडे पे, तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया आई नो बहुत सारा नोकझोंक तीखी नहीं होती हो, वो बड़ी मीठी नोकझोंक होती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें होती हैं। तो रक्षाबंधन के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ, और रक्षाबंधन की वजह से ही मिठाइयों की डिमांड बढ़ गई है, और मिठाइयों की डिमांड बढ़ी है तो कुछ लोगों ने सिर्फ पैसों के लिए गलत काम करने शुरू कर दिया, मतलब नकली मिठाइयाँ बनानी शुरू कर दिया। आज ही मैंने बात करी थी वीडियो में, एक वायरल हो रही थी जिसमें नकली मिठाई बनाई हुई थी, पुलिस वाले उनसे बोल रहे कि खुद खा के दिखाइए, वो खाने को तक को तैयार नहीं है, सोचिए वो उस मिठाई को बेच रहे थे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नोन की दुकान पर ही जाइए मिठाई खरीदने के लिए, और अगर आप किसी को नहीं जानते तो घर में खुद से मिठाई बना लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें जो घर में बना सकते हैं, और आजकल तो YouTube पर हजारों रेसिपी पड़ी है कि घर में भी घेवर बन जाएगा, बहुत ईजिली बन जाएगा, ट्राई तो कीजिए एक बार, थोड़ी सी मेहनत लगेगी बस, और इसी के साथ साथ जब आप खुद से बना लेंगे ना तो आप लोगों को अपने ऊपर फ़ख्र होगा, आप लोगों को लगेगा हाँ यार मैंने कुछ तो अच्छा बनाया है, तो इसके बारे में ज़रा सोचिए। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगा आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 9, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि वापस आएगी गीत विदेश के बाद, या नहीं इसलिए ख्याल नहीं रखना, ख्याल इसलिए रखना क्योंकि वायरल बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, आपको शायद मेरी आवाज़ में भी पता चल रहा होगा, मेरी आवाज़ भी ख़राब हो चुकी है एंड तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल तक ठीक हो जाऊँगा बस यही प्रे कर रहा हूँ, और कल ही मिलते हैं आप सभी से 5 से 9, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

रात थोड़ी सी गहरी हो गई है, शहर की आवाजें थोड़ी कम है और शायद इसी वक्त दिल की आवाज थोड़ी ज्यादा साफ सुनाई देती है। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके और इसके सबसे खूबसूरत हिस्से इश्क शायराना में हम आज की रात मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसे शायर से जिनका नाम लेते ही मोहब्बत, उदासी, इंतजार और एक अजीब सी बेबाकी सब एक साथ याद आने लगते हैं। नाम है अहमद फराज। फराज साहब ने बहुत ही कम उम्र में पोएट्री लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने उर्दू और पर्शियन में हायर स्टडीज की और अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत रेडियो के तौर पर की, यानी आवाज और अल्फाज से उनका रिश्ता सिर्फ एक शायर का नहीं था, वो आवाजों की दुनिया को समझने वाले इंसान भी थे। लेकिन फराज सिर्फ लव पोइट नहीं थे, उनके अंदर एक रिबेलियस आदमी भी था। शायद यही वजह है कि उनकी पोइट्री में मोहब्बत भी सिर्फ फूलों और चांद की कहानी नहीं, उसमें विरोध है, दर्द है, दूरी है, सवाल है और सबसे बड़ी बात अपनी बात कहने की हिम्मत है। और यही चीज मुझे फराज के सबसे करीब लगती है, क्योंकि हम भी तो आजकल दो ही तरह की जिंदगी जीते हैं, एक जो इंस्टाग्राम पर दिखाई देती है और एक जो रात के इस वक्त अपने कमरे में अकेले बैठकर महसूस होती है। फराज उसी दूसरी जिंदगी के शायर हैं, वो उन फीलिंग्स के शायर हैं जिन्हें हम टाइप तो बहुत करते हैं लेकिन सेंड नहीं कर पाते। तो आज की रात थोड़ा वक्त फराज के नाम करते हैं, उनकी मोहब्बत को समझेंगे, उनकी नाराजगी को महसूस करेंगे और शायद उनकी कुछ बातों को भी, और शायद उनकी कुछ बातों में अपनी ही कोई कहानी मिल जाए। मैं हूं आपके साथ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां और अब इस रात को थोड़ा और खूबसूरत बनाने का वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके मैं आपके साथ हूँ, आपकी इश्क वाली गीत शो है इश्क बाजियां, और ये है हमारा सेगमेंट इश्क शायराना। अभी हमने जाना फराज को, उस आदमी को जो सिर्फ मोहब्बत का शायर नहीं था बल्कि अपने समय में बेचैनी को भी अपनी पोएट्री में जगह देता था। लेकिन अब जरा उस फराज के पास चलते हैं जिसे दुनिया ने सबसे ज्यादा प्यार किया, द रोमांटिक फराज। और फराज की मोहब्बत की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनकी मोहब्बत बहुत परफेक्ट नहीं थी। उसमें आर्ग्यूमेंट्स है, इंतजार है, इनसिक्योरिटी है, दूरी है, ईगो है, और कभी कभी वो एक्सेप्टेंस भी है कि शायद सामने वाला अब आपके साथ नहीं है, यानी बिल्कुल हमारी तरह। आज हम रिलेशनशिप में होते हुए भी कितनी ही बार अकेले होते हैं। एक इंसान ऑनलाइन होता है लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल, मैसेज पढ़ लिया जाता है जवाब नहीं आता है, किसी का सीन पता होता है लेकिन लास्ट फीलिंग नहीं पता होती। और फराज शायद इसी सब ठीक है के पीछे वाली दरारों के पीछे के शायर है। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब जरा सोचिए कितना स्ट्रेंज है ना, हम वो लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद फोटोग्राफ्स डिलीट करते हैं, चैट आर्काइव करते हैं, अनफॉलो करते हैं, लेकिन मेमोरी को डिलीट करने का कोई बटन नहीं होता। कभी कभी कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है लेकिन आपकी लैंग्वेज में रह जाता है, किसी गाने में, किसी परफ्यूम में, किसी सड़क के मोड़ पर, किसी कैफे की टेबल पर, और सबसे ज्यादा रात के उन दो मिनटों में जब आप खुद से कहते हैं आई एम ओवर इट, और दिल बहुत कामली कहता है रियली। फराज की पोइट्री की यही खूबसूरती है, वो आपको लेक्चर नहीं देती कि प्यार क्या है, वो बस आपकी फीलिंग को नाम दे देती है। और शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी फराज पुराने नहीं लगते, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, रिलेशनशिप के नाम बदल गए हैं, डेटिंग एप्स आ गए हैं, सिचुएशनशिप्स आ गई हैं, लेकिन इंतजार अभी भी वही है। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, सेगमेंट है इश्क शायराना, और अब है दिल को थोड़ा और फराज में बनाने का वक्त। है एक म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड क्योंकि कहानी अभी बाकी है।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है. डॉक्टर कॉलिंग.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छटके। मैं हूं आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, जहां आज रात इश्क शायराना में हम बात कर रहे हैं अहमद फराज की। अब तक हमने फराज को एक रोमांटिक पोइट की तरह देखा, लेकिन फराज की मोहब्बत सिर्फ आई मिस यू वाली मोहब्बत नहीं है, उनकी पोइट्री में एक बहुत मैच्योर रियलाइजेशन भी है कि कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं खोते, हम उसके साथ अपनी बनाई हुई पूरी दुनिया को खो देते हैं। क्योंकि ब्रेकअप के बाद सबसे मुश्किल चीज ये नहीं होती कि वो इंसान चला गया, सबसे मुश्किल होता है उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे रिचुअल्स भी चले जाते हैं। वो गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस, वो बिना मतलब की कॉल्स, वो घर पहुंचकर बताना, वो किसी पर्टिकुलर जगह से गुजरते हुए अचानक उसका याद आ जाना, और फिर एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आप उस इंसान को नहीं, उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ को मिस कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ करता था। फराज की एक और बहुत खूबसूरत लाइन है, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। बस यही तो है, किसी के चले जाने के बाद पता चलता है कि वो सिर्फ एक पर्सन नहीं था, वो आपका रूटीन था, आपकी उम्मीद था, आपकी छोटी छोटी खुशियों का विटनेस था। और शायद इसीलिए कुछ लोग जाते जाते भी नहीं जाते हैं, उनका नाम हमारी कन्वर्सेशन में नहीं आता लेकिन हमारी खामोशी में रह जाता है। और आज के टाइम में जहां हम हर चीज को जल्दी रिप्लेस करने के आदि हो चुके हैं, नया फोन, नई जॉब, नई कैफे, नई रिलेशनशिप, वहां फराज हमें एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ याद दिलाते हैं, कुछ कनेक्शंस रिप्लेस नहीं होते, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। शायद क्लोजर का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ महसूस होना बंद हो जाए, क्लोजर शायद ये है कि एक दिन वही याद रह जाए और आपका दिल टूटे नहीं, बस थोड़ा सा आप मुस्कुरा दो। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत, और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। आज की रात हमने अहमद फराज साहब को सिर्फ एक पोइट की तरह नहीं बल्कि एक फीलिंग की तरह समझने की कोशिश की, एक ऐसे पोइट की तरह जिसकी पोइट्री में लव भी है, रिबेलियन भी है और लोनलीनेस भी है, जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कैरी करते हैं। फराज की पोइट्री की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, वो आपको सिर्फ किसी और की याद नहीं दिलाते, कभी कभी वो आपको अपने खुद की याद दिलाते हैं, उस इंसान की जो कभी किसी के लिए बहुत खास हुआ करता था, उस रात की जब आपको लगा था कि ये रिश्ता हमेशा चलेगा, उस गुड बाय की जिसे आपने सामने वाले से नहीं शायद खुद से कहा।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहाँ हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहाँ इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क, एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट और दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली। उनकी कला ने चार्लेट का दिल जीत लिया और प्रद्युमन ने चार्लेट के अंदर छुपी हुई सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को महसूस किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें यादों में बदलने लगी, और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहां चार्लेट को अपने घर अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फासला चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सच्चा इश्क, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहाँ है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी में आएगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक नया मतलब समझाया। कहानी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि जैसा हमारे को पिक्चरों में मूवीज़ में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस्ड इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है। वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज़ में मन नहीं रखता। वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको। और ज़्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हम पॉजिटिवली कैसे सोच पाएंगे, हमारे को हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखने लगती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो तुरंत जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकियाट्रिस्ट से मिले।

एक बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, जहाँ मैं बात करती हूँ उन कहानियों की जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहाँ मैं बात कर रही हूँ प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ दूरियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये सुना है कैसे एक मुलाकात ने दो अलग दुनियाओं के लोगों को करीब ला दिया, कैसे उन्होंने शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता खुद बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा। क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए, आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें और कभी वो लम्हे जहां शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह हो ना, तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी चार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। आगे जानेंगे कि क्या प्रद्युमन अपनी इस मोहब्बत तक पहुँच पाए और क्या हुआ जब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 99.6 एफएम, जहां मैं बात करती हूँ उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 9.6 FM. कुछ हट के शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। तो आखिरकार कई महीनों के सफर के बाद न जाने कितने शहरों, कितनी सरहदों और कितनी मुश्किलों को पार करके प्रद्युमन कुमार स्वीडन पहुंच ही गए। सोचिए, जिस चेहरे को देखने के लिए वो हर रोज साइकिल चलाते थे, जिसकी याद उनकी थकान मिटा देती थी, आज वही चेहरा उनके सामने था। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें गले मिलकर नहीं आंखों से शुरू होती हैं, और शायद उस दिन भी उन दोनों की आंखों ने वो सब कह दिया होगा जो लफ्ज कभी कह नहीं पाते। वैसे एक बात कहूँ, आजकल तो लोग लास्ट सीन देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और उस जमाने में एक इंसान ने पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर दिया सिर्फ एक बार तुम कैसी हो सामने खड़े होकर पूछने के लिए। बस इसी को कहते हैं असली मोहब्बत। अब मैं भाई ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए साइकिल लेकर अपने घर से निकल पड़ो, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम या दिल्ली जाते जाते आधे लोग ये बोल देते हैं, यार बहुत दूर है। लेकिन हाँ, अगर किसी के लिए दिल सच में धड़कता हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते कन्वीनियंस से नहीं एफर्ट से चलते हैं। और प्रद्युमन और चालक की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज ना हिंदी होती है, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है एफर्ट्स। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, मिलूंगी फिर एक और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी के साथ। तब तक अपने प्यार को वक्त दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए, और याद रखिए, सही इंसान मिल जाना किस्मत होती है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है। कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और

रेडियो महारानी कुछ हटके।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जलसे भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

बाजिया। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जय श्री हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गए, सकहित सब परपंच तजी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशा व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कहे मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या? बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निश दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन

0: अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे, लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, महाप्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, ए शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का, अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा, वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ, आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो, यद्यपि डूबेगी नहीं, अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं, नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे, नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं, पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप, पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के, एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है, वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक, और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया, एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं, ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही, चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में विश्राम तो यही मिलेगा, के काहे को लंबी यात्रा करोगे, इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम, महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है, श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो, हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव, कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है, बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरे हो,
1: साक्ष